0: Let's start this Monday morning with a major development that's taken place as far as Twisha death probe is concerned. The bail plea of her husband, Samar Singh, has been rejected by the court as a probe into the death of Twisha under unnatural circumstances has picked up pace. It is Samar, the advocate, who continues to be absconding. There's a 10,000 rupee reward that has been announced for him. His passport has been cancelled, and as far as the cancellation proceedings are concerned, those have been initiated, so it's going to take a little while. Meanwhile, we have Twisha's family that has expressed a demand for a second autopsy considering the sequence of events surrounding her death. In fact, they are wanting that the autopsy should be conducted in Delhi at the AIIMS hospital and not at the AIIMS hospital. That was the first autopsy that was conducted at the AIIMS hospital in Madhya Pradesh. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching those marks on Twisha's neck. And of course, the family now demands that the body should be transferred to Delhi for that monitoring. And of course, this is the demand that's been made by the family. They're saying that we want justice and we want another autopsy. That's what the family is now wanting.
1: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Twisha ke death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
2: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
1: क्या ये कुछ
2: आ रही है सर अब?
1: जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
2: नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
2: देखिए, आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
1: तो ऐसे क्या
2: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
2: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर, जिसका मैंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है, उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
2: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी. एक्चुअली बेटियां ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वाज अ केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी. बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई.
1: त्विशा तो नोएडा वापस आना चाहती थी,
2: है कि जिसमें बेड़िया
1: जी जी जी
2: आती थी, आती आना चाहती थी. सर ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है. सर दे आर कैमेलियन पीपल. इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड. बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी. तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है. पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे.
1: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
2: नहीं नहीं, पता नहीं था. बिल्कुल नहीं पता था. उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली. मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था.
0: That was the father of Twisha speaking to Shivarur of NDTV. But what is the other side saying? The mother-in-law of Twisha has blamed Twisha, claiming that the puja part conducted at home was merely a show. She alleged that Twisha had taken an abortion pill and had personally called Samar to inform him about it. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist and attend counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and withdrawal symptoms while taking medicines, and her behavior allegedly changed drastically after a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps very easily. That is what they're saying in their defense.
3: Dard hame hota hai because today their parents, they think we are, you know, criminals. The press, the media, everything has gone against us. इट्स वेरी इजी. बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट. लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स. टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो. मैंने उसकी मदर को फोन किया. आई सेड शी इज यूर नीडेड नाउ. पांच महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे. एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया. ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी. ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं. पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है. बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम. सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट टू बुक योर टिकट आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ. नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना. उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग. वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर.
0: Switching tracks now, after Prime Minister Modi's five-nation visit, he's back and his retrieval of the medieval Jola plates has now caused politics that have erupted here back home. Criticizing the ruling, as far as the TVK government is concerned, the BJP state president has hit out at the Chief Minister Vijay for staying silent on the return of the centuries-old copper plates from Netherlands and alleged that the Tamil Nadu government is devoid of Tamil pride. The Chola plates date back to the, you know, Chola reign 1,000 years ago, and the plates were used to ink state records and serve as proof of civilizational heritage. And staying with news from Tamil Nadu is the Amma canteens that are set for a major facelift. Well, that's the order passed by the new Chief Minister Vijay just within 10 days of taking office. He's ordering an immediate statewide revamp. According to the Tamil Nadu CMO, it is the officials that have been directed to begin renovation work, and that's going to start instantly so, and replace damaged utensils, outdated kitchen equipment, improve the food quality, as well as the operational standards. The move comes after complaints regarding the quality and the taste of food offered at those very canteens. The low-cost meal scheme was launched during the AIADMK government back in 2013. The canteens offering subsidized food were an instant hit. Currently, there are about 620 functional canteens across the state of Tamil Nadu. And from Tamil Nadu, let's switch tracks to Karnataka. Amid the rising temperature over the tussle, which continues as far as the chief ministerial role is concerned, between Siddaramaiah and D.K. Shivkumar, now we also have senior Congress MLA K.N. Rajana, who has said that it's the Home Minister, Parmeshwara, who should be made the Chief Minister of Karnataka if incumbent Siddaramaiah is replaced in a leadership change in the state. The former minister claimed that the Home Minister served as the party's state president for about 8 years. Had he won the 2013 assembly elections, he would have become the Chief Minister then itself. That is what Rajana had to say.
4: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಾವು ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು ಹೌದು ಹಿಂದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ವ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅವರು 13ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋರು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈಗ ಅದು ಹಳೆ ಕೂಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಕಿ ಐತಲ್ಲ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನಾ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಆಸ್ತಿನೋ ಅಲ್ಲ ಜನರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ
0: And with that, we're slipping into a very short break. On the other side, we'll get you Donald Trump putting a hold as far as those planned strikes against Iran is concerned. Why? Because the Gulf countries have requested. We're going to get you details on the other side.

0: Let's start this Monday morning with a major development that's taken place as far as Twisha death probe is concerned. The bail plea of her husband, Samar Singh, has been rejected by the court as a probe into the death of Twisha under unnatural circumstances has picked up pace. It is Samarth, the advocate, who continues to be absconding. There's a 10,000 rupee reward that has been announced for him. His passport has been cancelled, and as far as the cancellation proceedings are concerned, those have been initiated, so it's going to take a little while. Meanwhile, we have Twisha's family that has expressed a demand for a second autopsy considering the sequence of events surrounding her death. In fact, they're wanting that the autopsy should be conducted in Delhi at the AIIMS hospital and not at the AIIMS hospital. That was the first autopsy that was conducted at the AIIMS hospital in Madhya Pradesh. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching those marks on Twisha's neck. And of course, the family now demands that the body should be transferred to Delhi for that monitoring. And of course, this is the demand that's been made by the family. They're saying that we want justice and we want another autopsy. That's what the family is now wanting.
1: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Twisha ke death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
2: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
1: क्या ये कुछ
2: आ रही है सर अब?
1: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
2: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादीनों मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी, क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
2: देखिए, आज आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
1: तो ऐसे क्या
2: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
2: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमारे लोगों ने जाकर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मैंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए सामने?
2: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव

0: बेड़िया
1: जी जी जी
0: जी आती थी आती आना चाहती थी सर। ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
0: नहीं नहीं, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली में। तो बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
2: That was the father of Tushar speaking to Shivarur of NDTV. But what is the other side saying? The mother-in-law of Tushar has blamed Tushar, claiming that the puja path conducted at home was merely a show. She alleged that Tushar had taken an abortion pill and had personally called Samar to inform him about it. According to her, Tushar was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist and attend counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and withdrawal symptoms while taking medicines, and her behavior allegedly changed drastically after a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps very easily. That is what they're saying in their defense.
3: Dard hame hota hai because today their parents, they think we are, you know, criminals. The press, the media, everything has gone against us. इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। वेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज योर नीडेड नाउ। पांच महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से, और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, यू वांट टू बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ, नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर। शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर।
2: Switching tracks now, after Prime Minister Modi's five-nation visit, he's back, and his retrieval of the medieval Jola plates has now caused politics that have erupted here back home. Criticizing the ruling, as far as the TVK government is concerned, the BJP state president has hit out at the Chief Minister Vijay for staying silent on the return of the centuries-old copper plates from Netherlands, and alleged that the Tamil Nadu government is devoid of Tamil pride. The Chola plates date back to the, you know, Chola reign 1,000 years ago, and the plates were used to ink state records and serve as proof of civilizational heritage. And staying with news from Tamil Nadu is the Amma canteens that are set for a major facelift. Well, that's the order passed by the new Chief Minister Vijay just within 10 days of taking office. He's ordering an immediate statewide revamp. According to the Tamil Nadu CMO, it is the officials that have been directed to begin renovation work, and that's going to start instantly so, and replace damaged utensils, outdated kitchen equipment, improve the food quality, as well as

0: Well, Divya, if you see earlier, what we have seen that on Friday, there was a sudden increase of approximately 3 rupees on diesel and petrol prices. And right now, I'm going to move forward and show you the meter over here. This petrol pump where I'm standing right now in Mayur Vihar area of East Delhi. Here you can see this was the previous price, 97.77 paise. So this was 97 rupees and 77 paise. And if you see the new price over here, the hiked price over here is 98 rupees and 64 paise. I'm joined by one of the early commuters over here this very morning. I'm going to speak to some individuals over here, get some voices on the ground. अच्छा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका?
1: महेंद्र विष्णुई.
0: जी इस वक्त आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आए हैं, क्या आपको रात में पता चल गया था कि पेट्रोल का दाम फिर से 1 रुपये के आसपास बढ़ गया है?
1: नहीं, मेरे को नहीं मालूम पड़ा था. ये मालूम है कि 3 रुपये बढ़ गया था, लेकिन 1 रुपये जो बढ़ा है मेरे को अभी नहीं आइडिया है.
0: अच्छा, ये फ्राइडे को पड़ा था 3 रुपये, उसके बाद आज जो है फिर 1 रुपये के आसपास बढ़ गया. 91 पैसे एग्जैक्टली बढ़े.
1: मेरे को नहीं मालूम ये
0: कितना फर्क पड़ रहा है एक आम मिडिल क्लास की जनता पे, उनके पॉकेट पे कितना असर.
1: इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. अवेलेबल अगर पेट्रोल रहे, डीजल पेट्रोल रहे, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट का चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें भी लॉकडाउन कर दिया जाए.
0: इतनी सुबह सुबह जो है आप कहाँ ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं या फिर बिजनेस की तरफ?
1: जा रहा हूँ मैं.
0: प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था लोगों से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, है ना, किस तरीके से देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ा?
1: नहीं, कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है. जो मेट्रो में भी मैं बीच बीच में मेट्रो में जाता हूँ मैं, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है. हाँ, 2-4-5% का पड़ा होगा. जो लोग समझदार लोग होंगे वो लोग जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरे अपने ऊपर ही कि जिससे मेरा मन नहीं होता है कि भाई कार से नहीं जाना है, मैं जाता हूँ. मोदी के हिसाब से नहीं कि भाई मोदी के हिसाब से मैं जाता हूँ, मेरा अपना मन होता है तो मैं मेट्रो से जाता हूँ.
0: सो आई एम गोइंग टू गेट मोर वॉइसेज ओवर हियर. अच्छा, मुझे ये बताइए, आप पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, आप जो है आप यू आर द आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड, है ना, आपको सब कुछ पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आमतौर पर जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ रह रही है आजकल भी या फिर कम हो गई है पेट्रोल कम?
2: नहीं, भीड़ तो तकरीबन वैसी ही रह रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा.
0: लोग आते हैं उसी?
2: हाँ, लोग आते हैं, मगर वही कहते हैं कि रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे.
0: बोलते हैं लेकिन फिर भी आते हैं, है ना?
2: बिल्कुल.
0: अच्छा, ये बताइए, अभी फ्राइडे के रोज़ जब रेट बढ़ा था 3 रुपये के आसपास, उससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आह्वान लगाया था लोगों से कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, तो असर कुछ दिखा था लोग?
2: नहीं, ऐसा कोई असर नहीं दिखा.
0: बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर?
2: नहीं जी, ग्राउंड पर कोई असर नहीं है. भीड़ उतनी है, पब्लिक उतनी आ रही है जितनी आती है.
0: So here you see, let me just move forward and try to speak to some more individuals who are coming over here at the very petrol pump. We'll try to get more voices on the ground. Could you please just... Yes, thank you. May I know your name, please? Kya naam hai?
3: Harshi.
0: Achha, petrol ka daam 1 rupaye phir se takriban badh gaya hai, 91 paise badh gaya hai. Pata chala tha aapko raat?
3: Nahin.
0: Achha, abhi pata nahin hai. Achha, morning shock lag raha hai, ya? Friday ko... पैसा फिर बढ़ गया. अभी आप जैसे अभी पहुंच ही रहे हैं, अभी आप जब भर पाएंगे तो पता चलेगा आपको कितना असर पड़ रहा है मिडिल क्लास के पॉकेट पे, कितना असर पड़ा.
3: असर तो पड़ेगा, मतलब आई डोंट यूज कार सो मच. सो
0: जिंदगी आप ऑफिस कैसे जाते हैं? मेट्रो से जाते हैं?
3: मेट्रो से जाते हैं. मेट्रो
0: मयूर विहार के इलाके में रहते हैं आप, यहाँ से मेट्रो बहुत नज़दीक है. आमतौर पर जो सेंटिमेंट्स है लोगों की साइकी है उस पर कितना असर पड़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आह्वान के बाद कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें?
3: फ्रैंकली मुझे पता नहीं, पर लग रहा तो फ़र्क तो होगा, होगा ही होगा.
0: सो हे यू सी, दीज आर द कॉमन वॉइसेस एंड पीपल आर इन ए जनरल सेंस दे आर सजेस्टिंग दैट एट टाइम्स दे टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एट टाइम्स व्हेन इट्स कन्वीनियंट फॉर देम दे बेसिकली टेक आउट देयर ओन कार्स एज वेल. सो राइट नाउ यू कैन सी द ग्राउंड जीरो सिचुएशन एंड इट्स प्रीटी अर्ली मॉर्निंग एंड and gradually when the day will start we'll expect the more office goers to come out on petrol pump and they will take petrol and diesel from these pumps and then they will move towards their office or destination sites. So things will gradually and will start coming out and then we will get more voices from the ground zero.
4: Right. Well, Akhil, let's just get an RJD leader joining us as well. Mutunjay Tiwari is speaking with us here on NDTV. Thank you so much, sir, for speaking with us. Do you feel that this price size hike that we are seeing has been an election year, and this was an election year, and that is been quite an election moot point, which is why we're seeing this rise right after the elections have been

0: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Twisha ki death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
1: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
0: क्या ये कुछ
1: आ रही है सर अब?
0: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
1: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
0: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
1: देखिए आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
0: तो ऐसे क्या
1: समझा जाता है कि ये दहेज ही है।
0: जी तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
1: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
0: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
1: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
0: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
1: कि जिसमें बेड़िया
0: जी
1: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: लेकिन नवनीति जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर ऐसे?

0: नहीं नहीं पता
1: बैठे।
0: नहीं था, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
2: Well, that is the father saying that Tushar was pushed at the airport when they were taking off for their honeymoon itself. What is the mother-in-law saying? The family of the husband is saying that the mother-in-law is saying that there is a puja part that was being conducted at the home and that was just a show. That is the claim that is being made by the mother-in-law. She alleged that Tushar had taken an abortion pill and had personally called Samarth in order to inform him about it after consuming that pill. According to her, Tushar was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist, attend counseling sessions. She also said that her hands would shiver, she had withdrawal symptoms, hinting towards the consumption of drugs. Her behavior allegedly changed drastically after a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps. That is the allegation being made by her mother-in-law.
3: उसके जब भी इसने एमटीपी स्वच्छ आई मीन अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन दैट इज दो तीन दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद जैसे 30 तारीख को आई है उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही, पॉसिबल है वो सब कुछ। बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया आई हैव टेकन दैट एमटीपी पिल। शी टोल्ड मी आल्सो उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाय चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई सेड लुक यू हैव डन दिस, लेकिन आपका एक यू नो एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप यू नो योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जेनरेशंस का निचोड़ होती है, वो आगे के लिए एक एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जेनरेशन कितना और आगे बढ़े। बट शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। उसका जाना इज अ बिग वैक्यूम फॉर अस।
2: Now, a 33-year-old woman's desperate messages that were sent to her family, allegations of harassment inside a marriage that had barely lasted a few months, 5 to be precise, and a death that has now sparked serious questions. We're talking about Tushar Sharma, who was found dead in Bhopal just days before she was supposed to return home to Noida. Her family alleges murder, while police have registered a case of dowry harassment and abatement to suicide. Here are the details you need to know.

0: I feel suffocated. They will not let me live. Mummy, I will go mad here. I can't handle this anymore. These were 33-year-old Twisha's last messages to her mother. Twisha had married Bhopal-based advocate Samarth Singh in December 2025 after meeting him on a dating app a year earlier. But within months, the marriage had allegedly turned toxic.
1: तीन दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ
2: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था सही हो जाता था हर एक माँ बाप चाहते हैं हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है तो अभी है ना 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था
0: अकॉर्डिंग टू चैट्स शेयर्ड बाय द फैमिली Twisha repeatedly asked her

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
5: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
6: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री।
7: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
8: ओडिशा का है। जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
9: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
10: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
11: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with a kind of mandate to bring about radical transformation.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
13: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
14: Economy, business, world, technology.
15: Noise filtered.
14: Numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
16: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: Well, yes, Parmeshwar, we've been hopping around different petrol pumps and fuel stations since morning. But what we've noticed is that the number of people has gone down considerably in the last few hours. It might just be coincidental, but might also be reflective of the price rise that one is witnessing here in Mumbai. This is the third petrol station. We are currently standing in Worli, where one can see that people have come here to get the tanks full. Let us now try and talk to them about what exactly are their thoughts about the price rise, as I see a few people gathering around here. Sir, petrol ka price wapas badh gaya hai 0.91 rupees se pichle ek hafte mein kam se kam 4 rupees se badha hai. Aap bike pe ho, kya kehna chahoge aap petrol rise
1: ke? Abhi ye chalu hai sab, ye yudh wagaira sab to badhega hi na.
0: Aapko expected
1: tha.
0: जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो चीजें हैं करेस्पॉन्डिंग तो
1: बढ़ने वाले हैं
0: फिर, मतलब अपने घर पे जो खाना आता है.
1: लेकिन अभी क्या है, ये इंटरनेशनल मामला है सब, तो बढ़ने वाला है तो बढ़ने वाला ही है ना.
0: आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये भी आह्वान किया है कि जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, तो क्या आपके काम के लिए या फिर आपके डेली लाइफ में क्या आप ट्राई करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट?
1: मेट्रो से जाता हूँ, रोज आ रहा था, बाइक बंद किया है, गाड़ी बंद किया है.
0: कर दिया?
1: हाँ, कर दिया.
0: ओके, वेरी नाइस. आई हैव गॉट अ फ्यू मोर पीपल हियर, लेट अस नाउ ट्राई एंड टॉक टू देम एज वेल. आप पेट्रोल भरने के लिए आए हो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है वापस पिछले एक हफ्ते में 4 रुपए से बढ़ गया है, अभी आई थिंक 107.5 पे प्राइस है. आप मुस्कुरा रहे हो, किस तरीके की फीलिंग है आपके अंदर फिलहाल?
2: क्या करेगा, सब जगह वही कंडीशन है, तो इधर भी है, बम्बई में भी है. क्या बड़ी बात है,
0: मुंबई में, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बाकी शहरों में सबसे ज़्यादा पहले से ही था.
2: हाँ, तो अब भी हो गया है, उसमें क्या बड़ी बात है, बढ़ना ही है, सस्ता ही तो होगी नहीं, महंगाई बढ़ती ही जाएगी. कभी देखा है क्या सस्ता ही हो गई है? जैसा साल बढ़ेगा वैसा महंगाई बढ़ती जाएगी.
0: क्या आप कोशिश कर रहे हो इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की, काम के लिए या बाकी कुछ चीज़ों के लिए, जब आप घर से बाहर निकलते मेट्रो ले या फिर मुंबई की लोकल ले?
2: नहीं,
0: वो नहीं होता.
2: नहीं,
0: कन्वीनियंस के लिए गाड़ी बेहतर है.
2: गाड़ी ही बेहतर.
0: जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, तो हम जैसे पहले लोगों से बात कर रहे थे कि कैसे जो बाकी की चीज़ें हैं, फिर वो हमारे घर पर डिलीवरी का सामान आता है, फूड प्राइस, वो सारी भी चीज़ें बढ़ेगी. आपको एक्सपेक्टेड था कि ये होगा जब वॉर स्टार्ट हुआ?
2: होगा,
0: पता था
2: ये होने वाला ही है.
0: ओके, वेल देयर यू सी, यू नो, पीपल हैव अ वेरी मेलोड अप्रोच टुवर्ड्स दिस डेवलपमेंट. इट इज़ नथिंग सरप्राइजिंग, इट वॉज ऑलवेज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स. अनदर थिंग इज दैट वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सजेस्टेड पीपल टू टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू नो, इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, कंसिडरिंग दैट इट स्टिल डज नॉट हैव डोर टू डोर कनेक्टिविटी एंड पीपल आर रेडी टू शेड इवन 5 or 10 एक्स्ट्रा रुपीज इन देयर पेट्रोल और अदर सॉर्ट ऑफ फ्यूल्स, बट दे वुड वॉन्ट इट टू बी मोर कन्वीनियंट, और दे वुड वॉन्ट द कन्वीनियंस टू बी मोर देन वॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफर्स, एंड हेंस इट इज नॉट एवरी वन कप ऑफ टी. बैक टू द स्टूडियो.
3: Anuj, as always, thank you so much for highlighting the ground realities for us. We will, of course, revert to you for regular updates. There is also another major factor at play, the weakening rupee. So while this is about another fuel hike, it's also the combination of geopolitical tensions, global crude prices, currency weakness, and India's dependence on imported oil all colliding at the same time. The big question is whether these hikes stabilize here or whether consumers in India should prepare for more pressure if crude prices remain elevated globally. But politically, the timing of this price hike is impossible to ignore. The opposition is questioning why prices were frozen through the election season. Why do hikes come immediately after voting ends? And if global crude pressures existed for weeks, why was the burden deferred till now? And crucially, if the US-Iran war escalates further and crude crosses dangerous levels globally, are Indian consumers staring at even more pain ahead? Well, listen to what political leaders from the Congress, RJD and DMK told NDTV this morning.
4: We all know that till the elections is over, the Prime Minister Mr. Modi wanted to keep these prices controlled, and now he has started escalating, increasing the prices. The Modi government's mistake, the public will pay for the price, and already they are keeping on increasing every week. Installments, they are doing this increase of prices. This is going to harm each one of us. Middle class, poor women, travel, daily wages, MSME sector, working women, everybody is going to be affected. It is an irresponsible act by the government. We all know that whenever election comes, only Modi will care about prices. We pray that the Uttar Pradesh elections, maybe if it is little ahead in September or October, he may not have raised these prices. Now, Uttar Pradesh elections are

0: 8 months before, and our memory is Indian public memory is not long lasting before he is using this kind of thing and punishing those people who had voted for them in Bengal, who had voted for them in Assam.
1: देखिए ये बात तो लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे सभी चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे। उस समय तो खूब हेलीकॉप्टर उड़ाया, गाड़ियों का काफिला अपना घुमाया, शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भव्य आयोजन किया, और जब इनका सब काम हो गया तो फिर जनता के ऊपर बोझ लाद दिया। अब उस समय कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही 3 रुपया बढ़ाए गए, आज फिर 96 पैसा यह 1 रुपया बढ़ाया गया। वो धीरे धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ाएंगे दाम इसका पता नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं, जनता को उपदेश दे रहे हैं, विदेश नहीं जाना है, सोना नहीं खरीदना है, ईंधन बचाना है। कौन सा मंत्री, कौन सा बीजेपी का नेता, कौन ऐसा है जो उनका पालन हो रहा है?
2: This price hike is the pattern. Just before the elections, they won't hike the price, and immediately after the elections, they will hike the price. This is the pattern for the last 5 or 6 elections. And I know if you inject a poison with a huge quantity, the patient will be dead. So they are injecting the poison little by little, so that we will get immunity. But nonetheless, this is poison. And that is why, that is the same thing the BJP government is now following. If you increase it by, say, 10 or 15 rupees, it will be, there will be protests on the street. That is the reason, slowly, every day, they are increasing.
3: Yesterday, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri had also addressed this entire crisis and spoken regarding the fuel price hike and the price rise in general. Here's what he had to say.
4: तो मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एंड समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए, पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं। और अभी आप लोग, मेरे भाई लोग बैठे हैं, वो सी क्या, वो एक तो गैस का प्राइस बढ़ाया था एक कुछ मेरे पहले, तो मैंने कैलकुलेशन की कि अगर एक परिवार एक सिलेंडर को 3 महीने में इस्तेमाल करता है तो 60 रुपए बढ़ने से तो एक दिन में कितना, 2 रुपए, 1 रुपया उसका बढ़ाए तो ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए अगर हो सके। पर अभी समय, इस समय कंपनियों का 1000 करोड़ का एक दिन में ओएमसी जो है वो लॉस हो रहा है।
3: Meanwhile, yesterday, Defence Minister Rajnath Singh has spoken regarding the fuel price hike as well, and how for the past 4 years, the price of petrol and diesel has not increased by even a single penny. He said only recently have they been raised, I beg your pardon, and that too by a very nominal amount. Here's what Mr. Singh had to say.
5: Petrol, diesel ki kimaton ka yahan tak prashn hai, aapne dekha hoga ki West Asia ki crisis paida hone ke bawajood, West Hormuz se बहुत सारी हमारी ऑयल की सिर्फ गुजर नहीं पा रही है, फिर भी मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत उस समय नहीं बढ़ने दी। मैंने पिछले 4 साल से एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी। अब याद रखें, बहुत ही नामी 3-3 रुपये बढ़ाया गया है। चैलेंज बड़ा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में देखिए, कहीं पर मोर देन 60% की हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, या वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बाद।
3: Well, let's switch tracks now. In a major development in the Trisha death probe, the bail plea of her husband Samarj Singh has been rejected by the court, as this probe into her death under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to be absconding with a 10,000 rupee reward announced for him and passport cancellation proceedings also initiated against him. Meanwhile, Trisha's family has expressed a demand for a second autopsy. They said that the one conducted in the AIIMS in Bhopal is not reliable. They want a second autopsy considering the sequence of events surrounding Trisha's death. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigation officer for matching the marks on Twisha's neck. The family now demands that the body should be transferred to AIIMS Delhi for a Supreme Court monitored probe and a second autopsy before the body decomposes. In fact, days after this 33-year-old Twisha Sharma was found dead at her marital home in Bhopal, her father has made a series of allegations against her husband, Samarth Singh, and his family. The husband is still absconding, as I mentioned, as the family continues to demand for justice and a second autopsy. Twisha's father has spoken to NDTV. Here's what he told us.
6: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Twisha ke death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
7: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
6: क्या ये कुछ
7: आ रही है सर अब?
6: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
7: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
6: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या कुछ दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
7: देखिए आज आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
6: तो ऐसे क्या
7: समझा जाता है कि ये दहेज ही है।
6: जी तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
7: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मैंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
6: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
7: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
6: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
7: भेड़िया
6: जी जी जी, जी बोलिए।
7: आती थी आती आना चाहती थी सर। ये एक एक भेड़िए ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर।

0: दे आर कैमेलियन पीपल इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर गुड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की जो बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
0: नहीं नहीं, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
2: सो यंग वुमन डेड इनसाइड हर मैरिटल होम, अ हस्बैंड अब्सकॉन्डिंग, अ ग्रीविंग फादर अलेजिंग हरासमेंट एंड डिमांडिंग जस्टिस, एंड नाउ अ डीपली डिस्टर्बिंग वॉर ऑफ एक्यूजेशंस बिटवीन टू फैमिलीज प्लेइंग आउट इन पब्लिक, बिकॉज द मदर इन लॉ इज ब्लेमिंग ट्विशा, क्लेमिंग द पूजा पाठ कंडक्टेड एट द होम वाज मेरली अ शो। शी इज ऑल्सो अलेजिंग दैट Twisha had taken an abortion pill and had personally called her husband to inform him about this. The mother-in-law is making a series of allegations. Listen in.
3: Unka parivesh hamara bahut farak tha. Lekin sabar se maine jab baat ki, he said, dekho, usko achha stimulus shayad milega. To she's a bright girl, achha karegi. Yakeenan, mujhe bhi aisa andesha tha, kyunki शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी, इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू, ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक पीआईएल, अपने नाम से मेरी एक पीआईएल है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है, हाई कोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं, शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी यू नो असीम संभावनाएँ होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स यू नो पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट, उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी, जो दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे देयर पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स, द प्रेस, द मीडिया, एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स, वेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ, 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे, एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे, एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
6: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.

0: Welcome back. Petrol and diesel prices have once again gone up across the country, nearly 90 paise per litre from today. This comes just days after a steep 3 rupee increase. So in Delhi now, petrol costs 98.64 rupees per litre, which is up from 97.77. In fact, across metros, fuel prices saw similar increases. In Mumbai, petrol rose by 91 paise to 107.59 rupees per litre. In Kolkata, it has crossed 109 rupees, recording the sharpest petrol hike, taking the price to 109.70 rupees per litre. And remember, this isn't just about what you pay at the fuel station. Diesel, meanwhile, has increased to 91.58 rupees from 90.67 in Delhi. And it's also increased in Chennai. Every fuel hike travels. It travels into your vegetable bill, your cab fare, your school bus fees, whether it's the delivery costs, milk prices, your inflation. The government says this triggers global. The US-Iran war has rattled crude oil markets. The rupee, meanwhile, is weakening against the dollar, and that has made imports more expensive. We've actually got crucial reports from the national capital and the financial capital lined up for you this morning. Listen in to how commuters are reacting.
1: Well, we really have to wait and watch out for this because if we look firstly talk about the losses that the OMCs are making before the 3 rupees price hike, the OMCs are making losses of 1,000 crore rupees every day. And as per the data shared by the ministry yesterday, the quantum of losses has come down from 1,000 crore rupees per day to 750 crore rupees per day. And even today's hike will definitely help the OMC to, you know, make up for the losses. But let me remind you that while this particular quarter looks very difficult for the OMC, but the previous financial year has been a record year in terms of revenue and operations for the OMCs. And coming on to your second point, like since the government is doing a staggered hike, this will definitely have an impact on the overall inflation scenario of the country. Just last week, the WPI data came out, and which was at a 40-month high. So any amount of increase, say, in petrol or diesel will have a, you know, cascading effect on the entire economy.
2: ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका?
3: अमित नाम है जी।
2: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
3: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
3: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए।
2: पड़ रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना
4: बहुत फर्क पड़ रहा है।
2: फ्राइडे का रोज़ देखा था 3 रुपये बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन 4 रुपये के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए। क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
4: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा।
2: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पर आते हैं, पेट्रोल पंप पर आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं? भीड़ कमी कम हुई है या बढ़ी है?
5: फिलहाल तो कम, कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं।
6: वी बिन हॉपिंग अराउंड डिफरेंट पेट्रोल पम्प्स एंड फ्यूल स्टेशन सिंस मॉर्निंग, बट व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज दैट द नंबर ऑफ पीपल हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली इन द लास्ट फ्यू आवर्स. इट माइट जस्ट बी कोइंसिडेंटल, बट माइट ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्राइस राइज दैट वन इज विटनेसिंग हियर इन मुंबई। क्या कहना चाहोगे आप पेट्रोल राइज?
7: अभी ये चालू है सब, ये युद्ध वगैरह सब तो बढ़ेगा ही ना,
6: आपको एक्सपेक्टेड
7: था?
6: जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंग
7: बढ़ने वाले हैं
6: फिर, मतलब अपने घर पे जो खाना आता है।
7: लेकिन अभी क्या है, ये इंटरनेशनल मामला है सब,
8: क्या करेगा, सब जगह वही कंडीशन है, तो इधर भी है, बम्बई में भी है, क्या बड़ी बात है।
9: प्राइस या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो अभी उधर वार चालू है उसका इफेक्ट इंडिया को हो गया है, उसका इफेक्ट तो इंडिया को होगा ना।
10: Once again, there has been hike in fuel prices across the country. There has been increase of 90 paisa on diesel and petrol price. It has more to do with the disruption in Strait of Hormuz, because ever since there has been West Asia conflict, we have seen the price of the crude oil is increasing. And that's really putting hole in the pocket of the common man. Let me talk to the people here at the petrol pump here in Jammu and try to find out how their budget has been impacted because of this rise in the fuel prices. Kaise iska asar pad raha hai aapke budget pe, jo ye petrol ke prices badh rahe hain aur daam?
11: मिल जाता है, थोड़ी कम चलाएंगे गाड़ी और क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना।
10: कैसे देख रहे हैं जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज फिर से तेल के दाम बढ़ गए?
11: आज फिर बढ़ी है,
10: आज फिर से बढ़ गए 90 पैसा डीजल और पेट्रोल के पास।
11: 90 पहले
10: 30 रुपए बढ़े थे,
11: चलो ऐसा सब बढ़ना ही है, क्या करना है,
12: इतनी मुश्किल हो जा रही है इसकी वजह से जो तेल के
13: मुश्किल तो बहुत है पर हल कोई नहीं है इसका।
14: सर एक्चुअली हमें कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, एज यू नो कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है जो मिडल ईस्ट में द वॉर बिटवीन द ईरान एंड द अमेरिका।
0: Well, yesterday, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri and Defence Minister Rajnath Singh, they had spoken on the price rise. And they've actually driven home the point that for the past 4 years, the prices of petrol and diesel have not increased by even a single penny. They argue they've only recently been raised, and that too by a very nominal amount. Here's what they had to say.
15: So, I'm very happy to tell you this, that India is such a country in the world, in the world, जिसमें ना कच्चे तेल की ना पाइप नेचुरल गैस की ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एंड समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए, पिछले चार वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं।
16: पेट्रोल डीजल की कीमतों का जहां तक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बावजूद वेस्ट हार्मोस से बहुत सारी हमारी ऑयल की सिर्फ गुजर नहीं पा रही है। फिर भी मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत उस समय नहीं बढ़ने दी, मगर पिछले चार साल से एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी। अब याद रखें बहुत ही नामी कीमती रुपये बढ़ाया गया है। भाई चैलेंज बड़ा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में देखिए कहीं पर मोर देन 60% की हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में या वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बाद।
0: बट पॉलिटिकली द टाइमिंग ऑफ दिस प्राइस हाइक इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर। द ऑपोजिशन इज क्वेश्चनिंग व्हाई प्राइसेस वर फ्रोजन थ्रू द इलेक्शन सीजन, व्हाई डू हाइक्स कम इमीडिएटली आफ्टर वोटिंग एंड्स, एंड इफ ग्लोबल क्रूड प्रेशर्स एग्जिस्टेड फॉर वीक्स, व्हाई हैज द बर्डन बीन डिफर्ड टिल नाउ? And crucially, if the US-Iran war escalates further and crude crosses dangerous levels globally, are Indian consumers staring at even more pain ahead? Because the BJP says that this is a minimal rise in the times of global conflict compared to other countries. But here's what political leaders from the Congress, the RJD, the DMK and the TMC and others have to say regarding the matter.
17: We all know that till the elections is over, the Prime Minister, Mr. Modi, wanted to keep these prices controlled, and now he has started increasing the prices. The Modi government's mistake

0: की गवर्नमेंट।
1: देखिए ये बात तो लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि पांच राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे सभी चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे। उस समय तो खूब हेलीकॉप्टर उड़ाया, गाड़ियों का काफिला अपना घुमाया, शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भव्य आयोजन किया, और जब इनका सब काम हो गया तो फिर जनता के ऊपर बोझ लाद दिया। उस कुछ दिन पहले, अभी दो दिन पहले ही 3 रुपया बढ़ाए गए, आज फिर 96 पैसा यहाँ 1 रुपया बढ़ाया गया। वो धीरे धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ेंगे दाम, इसका पता नहीं।
2: दिस प्राइस हाइक इज द पैटर्न जस्ट बिफोर द इलेक्शंस दे वांट हाइक द प्राइस एंड इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस दे विल हाइक द प्राइस। दिस इज द पैटर्न फॉर द लास्ट 5 or 6 इलेक्शंस। एंड आई नो इफ यू इंजेक्ट अ पॉइजन with a huge quantity, the patient will be dead. So they are injecting the poison little by little, so that we will get immunity. But nonetheless, this is poison, and that is why that is the same thing the BJP government is now following. If you increase it by say 10 or 15 rupees, it will be there will be protests on the street. That is the reason. Slowly, every day they are increasing.
3: कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत ख़राब है, काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ाया है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए, बिना जरूरत के गाड़ी लेके मत घूमिए, ज़्यादा गाड़ी मत घूमिए। हमारे नेता मंत्रियों ने भी कन्वॉय कम कर दिया है, तो सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा देश के हित में, नहीं तो दुनिया में जो संकट चल रहा है हम भी उसमें फंस सकते हैं।
4: पेट्रोल की बढ़ोतरी मजबूरी है, देश संकट में है, दुनिया संकट में है तेल से। जिस तरह से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर तेल बढ़ना स्वाभाविक है, और दुनिया में तेल के रेट बढ़े हैं, सिर्फ भारत में नहीं।
5: All right, let's switch tracks now. In a major development in the Trisha death probe, the bail plea of her husband Samarth Singh has been rejected by the court as the probe into the death of Trisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to be absconding with a 10,000 rupee reward announced for him and passport cancellation proceedings also initiated against him. Meanwhile, Trisha's family, they have expressed a demand for a second autopsy, considering the sequence of events surrounding the death and the fact that they have raised questions about the first post-mortem report that was conducted at AIIMS Bhopal. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigation officer for matching the ligature marks on Trisha's neck. And the family now demands that the body should be transferred to Delhi to AIIMS for a Supreme Court monitored probe and also a second autopsy before the body decomposes. It's been over 30 days though, since it's actually, I beg your pardon, days after the 33-year-old Trisha Sharma was found dead at her marital home in Bhopal. Her father has now made a series of allegations against her husband Samarth Singh and the family. As I mentioned earlier, the husband is still absconding as the family continues to demand for justice and that second autopsy to be conducted in Delhi at AIIMS. Trisha's father spoke to my colleague Shiv Arur. Here's what he told NDTV earlier.
6: Avnidhi Sharma, the father of Trisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Trisha ki death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. Samarth se mulaqat kab hui thi? Ek wedding ya dating app pe connect kaise hua? Aur aapko ye rishta kab pata chala?
7: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई। हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला, और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हम

0: ने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
1: क्या ये कुछ
0: आ रही है सर अब?
1: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
0: नहीं नहीं जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
0: देखिए आज आजकल के टाइम में दहेज है ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
1: तो ऐसे क्या
0: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी। तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
0: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
0: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
0: जिसमें भेड़िया
1: जी जी जी
0: आती थी आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
0: नहीं पता नहीं था बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली, मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
2: वेल अ यंग वुमन डेड इनसाइड हर मैरिटल होम, हस्बैंड दैट इज अब्सकॉन्डिंग एज वी स्पीक, एंड अ ग्रीविंग फादर अलेजिंग हरासमेंट एंड डिमांडिंग जस्टिस, एंड नाउ अ डीपली डिस्टर्बिंग वॉर ऑफ एक्यूजेशंस बिटवीन टू फैमिलीज प्लेइंग आउट इन पब्लिक। द मदर इन लॉ हैज ब्लेम्ड ट्विशा, क्लेमिंग द पूजा पाठ दैट दे कंडक्टेड एट होम वाज मियरली अ शो। She's alleged that Twisha had taken an abortion pill and had personally called her husband Samarth to inform him about it. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world. These are the list of accusations. Just listen in.
3: उनका परिवेश हमारा बहुत फर्क था, लेकिन सबर्ट से मैंने जब बात की, इसे देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा, तो शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी यकीनन। मुझे भी ऐसा अंदेशा था, क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी, इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी खाने वाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू, ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को, प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही, हाई कोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं, शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएँ होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट, उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज़ हमारे घर का एक हिस्सा थी, दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे द पेरेंट्स दे थिंक वी आर क्रिमिनल्स, द प्रेस, द मीडिया, एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज योर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे, एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं, पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से, और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट टू बुक योर टिकट आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ, नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर। शी डिडंट कम, और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना, उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन अब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर।
2: Well, a 33-year-old woman's desperate messages to her family, allegations of harassment inside a marriage that had barely lasted months, and now a death that has sparked serious questions.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.

0: were going on saying that there'll be no hike as far as elections are concerned. And the minute the elections were concluded, we have seen that hike not once but twice. Let's get you some of the political reactions coming in.
1: देखिए ये बात तो लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि पांच राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे सभी चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे। उस समय तो खूब हेलीकॉप्टर उड़ाया, गाड़ियों का काफिला अपना घुमाया, शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भव्य आयोजन किया और जब इनका सब काम हो गया तो फिर जनता के ऊपर बोझ लाद दिया। उस समय कुछ दिन पहले, अभी दो दिन पहले ही 3 रुपया बढ़ाए गए, आज फिर 96 पैसा यहाँ 1 रुपया बढ़ाया गया। वो धीरे धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ाएंगे दाम इसका पता नहीं।
2: No, it is a misrule of BJP. BJP is not a... see, they are economically, their programs have failed. Whatever they promised is in the words only. In practice, everything had failed. This government cannot run the country. They have, their idea is different. Their objective is different. It is not running the country smoothly or supporting the people of this country, doing good to the people of the country. So they will do anything. That is only because they have stopped purchase of oil from Russia.
3: कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत खराब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है, इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया कि खर्चा कम करिए, बिना जरूरत के गाड़ी लेके मत घूमिए, ज़्यादा गाड़ी मत घूमिए। हमारे नेता मंत्रियों ने भी कन्वॉय कम कर दिया है, तो सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा देश के हित में, नहीं तो दुनिया में जो संकट चल रहा है हम भी उसमें फंस सकते हैं।
4: पेट्रोल की बढ़ोतरी मजबूरी है, देश संकट में है, दुनिया संकट में है तेल से, जिस से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर तेल बढ़ना स्वाभाविक है और दुनिया में तेल के रेट बढ़े हैं, सिर्फ भारत में नहीं।
0: Switching tracks to the major development when it comes to the Tushar death probe, the bail plea of her husband, Samarth Singh, has been rejected by the court. As a probe into the death of Tushar's unnatural circumstances has now picked up pace. Samarth continues to be on the run. There's a bounty that has been announced. 10,000 rupees reward has been announced for him and his passport cancellation proceedings have been initiated. Meanwhile, the family has expressed a demand for a second autopsy considering the sequence of events surrounding her death. As per reports, the alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching the marks on her neck. The family now demands that the body should be transferred to Delhi from Madhya Pradesh and another autopsy should be conducted at the AIIMS hospital here in the national capital. And this is a request that's been made by the family. What else is the family claiming and saying on the matter? The father of Tushar spoke to NDTV's Shivarur. Listen in.
5: Avnidhi Sharma, the father of Tushar, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, aapka swagat hai. Main pehle bolna chahta hoon ki mujhe bahut afsos hai Tushar ki death ko lekar. To pehle main ye bolunga ki we express our deepest condolences to you, sir. We are very sorry to hear about this news. Mera pehla sawal, Navnidhi ji, main shuru se start karna chahta hoon. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
6: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
5: क्या ये कुछ
6: आ रही है सर अब?
5: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?

0: नहीं नहीं जल्दी शादी नहीं हुई है, एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीत जी क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
0: देखिए आज आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
1: तो ऐसे क्या
0: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
0: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
0: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रोक करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
0: जिसमें भेड़िया
1: जी बोलिए,
0: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
0: नहीं पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली, मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
2: Let's also get you the other side. It's the mother-in-law who has blamed Trisha, claiming the puja pajah conducted at home was just a show. She alleged that Trisha had taken an abortion pill and then later informed Samarth in order to let him know that she had done something that the family was against. According to her, Trisha was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist and attend counseling sessions as well. She reportedly suffered from her hands trembling, something she said was a withdrawal symptom of sort. And then she also spoke about her behavior, which changed drastically after she made a visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps very easily. These are the allegations and the claims being made by the mother-in-law.
3: उनका परिवेश हमारा बहुत फर्क था। लेकिन सबर्ट से मैंने जब बात की, सर देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा तो शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी। यकीनन मुझे भी ऐसा अंदेशा था क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी, इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू, ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL अपने नाम से, मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही, हाई कोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्नाइटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं, शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी यू नो असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स यू नो पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट, उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज़ हमारे घर का एक हिस्सा थी, जो दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे द पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स, द प्रेस द मीडिया एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती जाके झूल जाती है इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे, एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल में रहे हैं, इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो, सो मैनी आई कैन नॉट से, और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, यू वांट टू बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ, नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर। शी डिडंट कम, और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना, उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर।
4: आज एंटीसिपेटरी बेल लगी थी समर्थ की, त्रिशा के हस्बैंड की, जो कोर्ट ने पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद, गंभीर मामला होने के कारण और शादी के 6 महीने के अंदर ही उसकी अननेचुरल सर्कमस्टेंस में डेथ होने के कारण उसको गंभीर मानते हुए वो रिजेक्ट करी है। आज PM2 की मांग परिवार कर रहा है, देखिए परिवार के मन में बहुत सारे डाउट हैं, और इसमें कोई, मुझे लगता है कि इस

0: में सबकी सहूलियत की बात है कि सेकंड पीएम भी हो जाए, क्योंकि अगर दूसरे पीएम में भी वही रिपोर्ट आती है जो पहले पीएम में आई है, तो परिवार के मन से एक जो डाउट है वो भी निकल जाएगा, और इससे उनके जो आरोपी पक्ष हैं उनके हितों पे कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट पड़ता नहीं है।
1: That was Tushar's lawyer. Well, just 5 months after she was married, she was found dead in Bhopal, and she was supposed to return home here back in Noida. Her family alleges murder, while police have registered a case of dowry, harassment, and abatement to suicide. Here are details you need to know.

0: Clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
1: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth. We connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
2: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
1: Petrol and diesel prices have been hiked for the second time in less than a week. The last time the prices were up on Friday, and now the second increase that we're seeing with petrol prices here in Delhi up to 98.64 a litre. Diesel now costs over 91 rupees a litre. And here we have, just on Friday, when the prices had gone up by 3 rupees per litre amid mounting pressure from that rising global crude oil prices. In Mumbai, petrol prices have gone up by 91 paisa, so that makes it to 107.59 per litre, while diesel will now cost over 94 rupees, as that's also gone up by 94 paise. Akhil, my colleague, joining us in order to get us details. Akhil, take us through, you know, of course, we did know that this is going to happen. This was on expected lines as far as petrol hike the first time round was concerned. But now, in less than a week, a second one at that?
3: Well, that's right, Divya. If you see earlier, what we have seen that this week only, if you see on 15th of May, what we have seen that 3 rupees were increased.
1: Very good morning. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Vadva. We have a whole lot lined up for you, including petrol and diesel prices that have gone up once again. In a matter of 4 days, petrol and diesel is now costing almost 4 rupees more than it did on Thursday of last week. We're going to get your details first, the headlines. Petrol and diesel prices have gone up again, the second price hike that we're seeing in less than a week. In 4 days' time, in Delhi, petrol is now costing 4 rupees more at 98 rupees 64 paisa a litre, while diesel is at 91 rupees and 58 paisa. In Mumbai, it's over 107 rupees, while in Kolkata, it's close to 110 rupees. This is the fresh hike that we're seeing of 91 paise in the last 3 days alone. Opposition up in arms against the centre over the second fuel hike. In fact, it's the Congress slamming the Modi government for hiking the fuel right after elections have been concluded. And it's the missing belt that's become very crucial as far as the death probe in the death of Twisha Sharma is. Twisha's family is asking for an autopsy that needs to be conducted in Delhi's AIIMS, not in Madhya Pradesh. The first autopsy has been conducted. However, the husband continues to be on the run. There's also a bounty that's been announced to the tune of 10,000 rupees. Karnataka Chief Minister's role, and that is, you know, so far it was B.K. Shivkumar up against Siddaramaiya, but now a new name in the mix. We have G. Parmeshwara's name, the Home Minister's name, being also taken for that role of the Chief Minister. It is Jarki Holi who says the High Command will be taking that decision, and that's going to be taking place soon. And it is the superstar turned Chief Minister Vijay, in less than 10 days of taking charge of the state, he's ordered a revamp of the Amma canteens. He said that there's going to be a complete overhauling, and that is after complaints have been made about the quality of food being supplied at these subsidized canteens. And 3 people have been killed and 2 others were found dead in a car very close to the mosque where this attack took place in San Diego. Trump is calling it terrible, is asking for a thorough probe.
4: Presented by Canara Bank. Together we can.
1: Let's start with breaking news coming in, and it is the Delhi Taxi Drivers Union that has decided to go on a 3-day strike from the 21st of May, demanding fare hike as far as commercial vehicle drivers are concerned. And that is the Union of the Commercial Vehicle Drivers in Delhi that are planning to go on a 3-day strike from the 21st, starting from the 21st 21st, 22nd, 23rd, that's a three-day strike demanding a hike in taxi and auto fares in view of the price hike that we are seeing. Just today morning, the second price hike of fuel in the national capital and across the country. And due to continuously increasing prices of CNG, petrol and diesel, middle-class drivers are struggling to support their families, and therefore, in coordination with other organizations of Delhi, this is a call that has been taken. And this is a call to go on strike for 3 days. And the 3 days is the 21st, the 22nd and the 23rd of this month, after the central government has increased the fuel prices. We're talking about almost 4 rupees hike that we're seeing in petrol and diesel in the last 4 days itself. Akhil, my colleague, joining us from Delhi in order to get us details. Akhil, this is a decision that's been taken by the union of the drivers. These are commercial drivers. Take us to the demands that they're making, because while petrol is going up, why are the fares not at par with what's really happening here, what's unfolding here? This morning, we've seen that 91 paise hike, particularly as far as petrol is concerned. Diesel also has been increased. And of course, the CNG prices have also been increasing.
3: Absolutely, Divya. If you see at this stage, what we have been witnessing on ground, that it's the common people who are paying the brunt of it. I mean, if you see, we have been speaking to the locals, we have been speaking to the cab drivers, transport agency guys, and they have been saying that the impact can be seen, that because if you see in the last 1 week, first what we have seen, that on Friday there was increase of approximately 3 rupees, and today what we have seen, that 91 paisa has already increased in the petrol and diesel price. So what we have seen, that cumulatively, if you see, 4 rupees has increased. Behind me, you can see the visual of this taxi stand where we are standing right now. And to speak to some of the taxi union, are saying that the unions are going on a strike from 21st to May 23rd. Kya naam hai aapka, paaji?
5: Darshan Singh ji, ji.
6: Truck driver ka jo union hai, wo log मई 21 से लेकर के 23 तक जो है स्ट्राइक पे जा रहे हैं. तेल का दाम जो है लगातार बढ़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोग के कमर्शियल व्हीकल्स पे?
5: सर, वो हम सुबह के खड़े हैं, रोज़ कभी 3 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी 3 डीजल में, पेट्रोल में, सीएनजी में, जो भी करना है वो एक बार ये बढ़ा दें तो हमें पता चले. उससे हमारा जो थोड़ा बहुत काम चलता था वो भी ठप हो गया. हम सुबह से घर के आके खड़े हैं, कोई लॉस मीटर नहीं हो रही, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा. सारा ये प्रभाव तो बढ़ेगा, जब फ़ायदा तो बड़ी कंपनियों को हो रहा है, हम गरीब लोग जहाँ पे सुबह से आके शाम तक बैठे हुए हैं.
6: देख पा रहा हूँ आपके पास जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कितनी टैक्सीज चलती हैं आपकी
5: यहाँ पे? हमारे जो होटल में 35 टैक्सी चलती है, कनाट प्लेस के ऑल टू राउंड इनर सर्कल, आउटर सर्कल, 5 किलोमीटर एरिया में कम से कम 5,000-6,000 ओला उबर टैक्सी चलती है, जो सभी रोड के ऊपर खड़ी है. इससे फ़र्क तो पड़ता ही है, रेट बढ़ने से कोई हमारे पास काम नहीं आ रहा.
6: जैसे आप लोग होटल में टैक्सी प्रोवाइड करते हैं, तो आप अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो आप वहाँ पे अपने मालिकों से इस बात पे अग्रीमेंट नहीं बन पा रही है कि वो भी जो है वो आपका रेट बढ़ा दे, फेयर इंक्रीज़ कर दें
5: उस पर? जब आगे से अब रेट बढ़ा है तो हम अंदर अपने चीफ सिक्योरिटी से बात करेंगे, तो वो हमारा रेट भी बढ़ाएंगे आगे आने वाले में. पर पता तो चले ना, रोज़ 3 रुपये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, जो भी बढ़ाना है एक बार बढ़ा दें. इसकी वजह से सब जो हमारे ट्रक यूनियन है, टैक्सी ड्राइवर हैं, रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे और सब स्टैंडों पे वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं.
6: ये चक्का व्यायाम करने जा रहे हैं 21 से 23 तक ट्रक ड्राइवर के यूनियन, कितना फ़र्क पड़ने वाला है उससे?
5: सर, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. जितना भी बाहर से माल आ रहा है इस समय, वो सारा बॉर्डरों के ऊपर खड़ा है, जैसे ही वो खुलेगा.
3: यू सी, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन एंड द लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड ड्यू टू दिस प्रोटेस्ट व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन मई 21st टिल May 23rd.
1: Right, Akhil, all this has happened because petrol and diesel prices have gone up this morning by 90 paise. We're marking the second fuel price hike in less than a week, 4 days to be precise. Now in Delhi, 98.64, 98 rupees and 64 paise per litre is the cost of petrol, gone up from 97.77. That is how much petrol was costing till about yesterday. And that was after a 3 rupee increase, which was made on Friday, the 15th of May. Across metros, fuel prices have increased. In Delhi, it has increased, but also in Mumbai, it's even more expensive. We're talking about 107 rupees and 59 paise in Mumbai, up by again 91 paise. Kolkata is close to 110 rupees per litre, just 30 paise short at 109.70. While diesel prices has also gone up, we're talking about 91.58 from 90.67 in Delhi, and 94 paise to You know, as far as Chennai is concerned, now diesel is costing 96 rupees, over 96 rupees to be precise. And the latest revision comes days after that hike that we saw just 4 days back. So all in all, if you take the cumulative figure, it's almost close to 4 rupees per litre in a matter of 4 days. Let's get you what are the people in India say. The common man that has to bear the brunt of all of this. Let's get you voices from Delhi, from Mumbai, from Chennai. What are people saying, particularly in Jammu?
6: ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका?
7: अमित नाम है जी।
6: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
7: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
6: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
7: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए।
6: पड़ रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना?
8: बहुत फर्क पड़ रहा है।
6: फ्राइडे के रोज़ देखा था 3 रुपये बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन 4 रुपये के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए। क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
8: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा।
6: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पर आते हैं, पेट्रोल पंप पर आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं? भीड़ कमी कम हुई है या बढ़ी है?
9: फिलहाल तो कम, कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे
10: हैं। We've been hopping around different petrol pumps and fuel stations since morning, but what we've noticed is that the number of people has gone down considerably in the last few hours. It might just be coincidental, but might also be reflective of the price rise that one is witnessing here in Mumbai. क्या कहना चाहोगे आप पेट्रोल राइज?
11: अभी ये चालू है सब, ये युद्ध वगैरह सब तो बढ़ेगा ही ना।
10: आपको एक्सपेक्टेड
11: था
10: जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंग
11: बढ़ने वाले हैं
10: फिर, मतलब अपने घर पे जो खाना आता है?
11: लेकिन अभी क्या है, ये इंटरनेशनल मामला है सब,
12: क्या करेगा, सब जगह वही कंडीशन है, तो इधर भी है, बम्बई में भी है, क्या बड़ी बात है।
13: प्राइस या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो अभी उधर वार चालू है उसका इफेक्ट इंडिया को हो गया है, उसका इफेक्ट तो इंडिया को हो ही गाना।
14: Right now we are at one of the busiest petrol pumps in Chennai. Less than a week, for a second time, petrol and diesel prices have gone up. As far as Chennai is concerned, petrol prices have increased by 82 paise to 104.49 per liter, while diesel prices have gone up by 86 paise to 96.11 per liter.
15: Mayerumo vadikariga enna onnu puriliye eh enna dilikina indha mari aayi vedikide enna pannuva evlo nikidana
14: Okay, so these general prices are expressing shock over the sudden increase in petrol and diesel prices. Do you think this will affect general public?
16: But people are spending more on other areas. Let them spend for this petrol.
1: Right, let's get you political reactions coming about. What is the petroleum minister saying? How are they justifying this move?
17: So, मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एन समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए, पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं।
18: पेट्रोल डीजल की कीमतों का जहां तक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बावजूद वेस्ट हार्बर से बहुत सारी हमारी ऑयल की सिर्फ गुजर नहीं पा रही है, फिर भी मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत उस समय नहीं बढ़ने दी, मतलब पिछले 4 साल से एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी। अब याद रखें, बहुत ही नामी कीमती रुपये बढ़ाया गया है, चैलेंज बड़ा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में देखिए कहीं पर मोर देन 60% की हाइक हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, या वेस्ट एशिया की क्राइसिस पैदा होने के बाद।
1: Now let's get you the latest as far as the major development in the death probe of Tushar is concerned. The bail plea of her husband, Samarth Singh, has been rejected by the court as the probe into the death of Tushar under unnatural circumstances is picking up speed. Samarth is continuing to be on the run. There is a bounty that's been announced to the tune of 10,000 rupees, and his passport cancellation proceedings have also been initiated. It's a family that's expressed a demand for a second autopsy, saying that this autopsy should be conducted in Delhi's AIIMS hospital, not in Madhya Pradesh. Now, there are a lot of events that are, being spoken of. There are reports of that alleged belt used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer for matching with the marks on Twisha's neck. The family is demanding that there needs to be justice. They're asking for that second autopsy because they're not satisfied with what's taken place so far in the investigation. We also spoke exclusively to the parents and the brother of Twisha. Her family has made a series of allegations and claims against her husband and his family. Listen in.
19: Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं. बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी. अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
20: देखो, हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को. जब हमने टिकट कराई थी, उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो. यदि आप अब है ना, त्रिषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चल हम अभी नहीं आते, तू हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
19: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
21: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली. उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो. क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी. ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम
19: करना. आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए.
20: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप. यही वाला मेरे को हो रहा है.
21: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था. हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था. ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया.
20: पर घर में जाऊंगी, एक चीज उसकी रखी है, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं.
19: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
20: हाँ, वो इस बार बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी. तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक.
19: निकलना चाहती थी?
20: हाँ जी.
19: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी?
21: बिल्कुल बात कर रही थी. वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
20: नहीं रुकूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना ऐसे.
19: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था. उस चैट से सब सामने भी आ रहा है और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है. आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से.
20: जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो. ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है. तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी. बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में. ये बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक तो बोलती है वो समर्थ सिंह, उसको चिड़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है।

0: ट्विशा के भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षित, आपके पेरेंट्स से लगातार सब बात कर रहे हैं, आज आप आगे आकर ट्विशा के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए ट्विशा का इंसाफ कैसा दिखता है?
1: मैम, बहुत कठिन दिखता है, बिकॉज अभी तक जितनी हमें परेशानियाँ आई हैं हमारे अभी तक सफ़र में, इस 7 दिन में, पिछले 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज वर रियली हैविक। फाइलिंग दैट FIR आफ्टर 3 डेज ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट, वेर इन माई पेरेंट्स, वन हु इज़ 61 ईयर ओल्ड, एंजियोग्राफी हुई है उनकी, माई मदर इज़ इनकंसोलेबल, एंड वी वर रनिंग अराउंड द स्ट्रीट्स जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू लिसन टू अस। सो फॉर द फर्स्ट 3 डेज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, but we are here to fight and we will be fighting. They are part of the system, we will fight against the system.
2: Let's also listen to the other side. This was the family of Twisha, the brother, the mother, the father, all understandably in the state that they are, but at this time it's the mother-in-law who's coming out and making allegations and fresh allegations, claiming things against Twisha in regard to a handshaking, talking about that she was doing puja paath, which was just a show. She's alleged that she had taken an abortion pill and only later informed Smart about it. Let's listen in to what she is saying on this matter.
3: उनका परिवेश हमारा बहुत फर्क था, लेकिन समर्थ से मैंने जब बात की, सर देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा तो she's a bright girl, अच्छा करेगी। यकीनन मुझे भी ऐसा अंदेशा था, क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी, इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु और कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू, ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है, हाई कोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं, शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट, उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी, तो दर्द हमें होता है, बिकॉज टुडे द पेरेंट्स दे थिंक वी आर क्रिमिनल्स, द प्रेस, द मीडिया, एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो, मैंने उसकी मदर

0: को फोन किया, आई सेड शी इज योर नीडेड नाउ. 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे. एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी. ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं. इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है. बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ. नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस. ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग. वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर. उस जब ही इसने एमटीपी स्वच्छ, आई मीन अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस. उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयाँ ऑल इज प्राइम शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी. एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था. संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम. शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही. पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी, आई मीन विद ऑल दैट होप, हम फिर भी आगे चले उसके साथ. उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट एमटीपी पिल. शी टोल्ड मी ऑल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाई चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे. एंड आई सेड लुक यू हैव डन दिस, लेकिन आपका एक यू नो एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड. तो एक सिंपल वुमन से आप यू नो योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर. वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है, वो आगे के लिए एक एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े. बट शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. उसका जाना इज अ बिग वैक्यूम फॉर अस.
1: आज एंटीसिपेटरी बेल लगी थी समर्थ की, त्रिशा के हस्बैंड की, जो कोर्ट ने पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद, गंभीर मामला होने के कारण और शादी के 6 महीने के अंदर ही उसकी अननेचुरल सर्कमस्टेंस में डेथ होने के कारण उसको गंभीर मानते हुए वो रिजेक्ट करी है. आज PM2 की मांग परिवार कर रहा है. देखिए, परिवार के मन में बहुत सारे डाउट हैं, और इसमें कोई, मुझे लगता है कि इसमें सबकी सहूलियत की बात है कि सेकंड PM भी हो जाए, क्योंकि अगर दूसरे PM में भी वही रिपोर्ट आती है जो पहले PM में आई है, तो परिवार के मन से एक जो डाउट है वो भी निकल जाएगा, और इससे उनके जो आरोपी पक्ष हैं उनके हितों पे कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट पड़ता नहीं है.
2: And Twisha's friends describe her as a strong, independent person, questioning the circumstances around her death, raising concerns over allegations that have been made by her in-laws, the absence of the husband, and calling for an unbiased investigation in order to ensure justice. Speaking to NDTV, Shivarur was her friend, Twisha's friend, Madhuri Patel. Let's listen in to what she has to say.
3: Your first thoughts, your first reaction when you heard about Twisha Sharma's death. Madhuri, welcome.
4: Thank you for inviting me. My first thought when I saw this news was, I was shocked to the core, because the Twisha I knew was a very strong, independent girl. The Twisha I knew was somebody who will never take such kind of step. So it was very, very shocking to me, and because we met at such a young age, and for similar motive, in 2000

0: spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
1: इतना जॉली इतनी हैपनिंग लड़की थी और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा क्या हुआ

0: या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए।
1: ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के पास थोड़ी ताकत होती है, मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसको उसकी हत्या करवा दें और जो है पैरों में लगातार गोली मार दें। एक समुदाय के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कभी न कभी उसका फल निकलेगा।
2: इसमें देखो एक सामान्य प्रक्रिया सभी धर्मों के लिए है और सभी से अपेक्षा भी ये होता है कि सार्वजनिक स्थल का उपयोग कम से कम करें लोग, चाहे वो शादी विवाह करते हैं चाहे कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, सार्वजनिक स्थल पर करने से बचना चाहिए। और ये बात मैं सोचता हूँ कि इसमें आम सहमत माननीय न्यायालय द्वारा भी कई बार इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं और अच्छी बात तो ये कि धर्मगुरुओं का भी सकारात्मक रवैया इस पर रहा है।
3: देखिए देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, लॉ ऑफ लैंड से चलेगा, योगी की धांधली दादागिरी धमकियों से नहीं चलेगा। ये योगी टोटल फेल हो चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या सीएम को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है क्या? हाँ क्या कर डालेंगे, चलिए आप गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या करेंगे आप बोलते हो? दो तीन शिफ्ट में पढ़ो। अरे भाई साहब, एक मुसलमान रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ता है? क्यों कोई पढ़ेगा? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो धूप में, गर्मी में, बारिश में किसको शौक है पढ़ने का?
4: Switching tracks now, the U.S. Department of Justice has permanently dropped all criminal charges against Indian tycoon Gautam Adani and his nephew Sagar, bringing high-profile securities and wire fraud case in New York to a complete close after prosecutors concluded that they could not sustain the allegations. With his multiple U.S. regulatory and legal investigations involving the group that have all closed in the last couple of days. Last week, the U.S. Securities and Exchange Commission settled civil allegations tied to disclosures made to investors in connection with solar energy projects here in India. Court filings have showed that Gautam Adani agreed to pay $6 million and Sagar Adani paid $12 million US without admitting or denying wrongdoing. Thereafter, the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control settled allegations of the Adani Group violating U.S. sanctions on Iran in LPG imports. This followed the Indian, businessman, agreeing to pay $275 million while extending extensive cooperation with the investigation. And with that, we're slipping into a short break. Vedika will be up next with the very latest. Thank you so much for your time.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: The judges don't give a go-ahead. Second post-mortem, they are not going to perform the last rites of Tushar. So,
1: and Sikta Deo has spoken to Tushar's parents and brother. Her family has made a series of allegations against the husband, Samarth Singh, and his family. Samarth Singh, like I said, remains on the run.
0: Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं. बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी. अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
2: देखो, हम तो लेने जा रहे थे. 13 तारीख को भी हमने टिकट कराई थी. उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो. यदि अब है ना, तुषार को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चलो हम अभी नहीं आते, तो हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
0: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
3: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली. उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो. क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी. ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम
0: करना. आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए.
2: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप. यही वाला मेरे को हो रहा है.
3: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था. हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था. ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया.
2: पर घर में जाऊंगी, एक चीज उसकी रखी है, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं.
0: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
2: हाँ, वो इस बार बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी. तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक
0: निकलना चाहती थी.
2: हाँ जी,
0: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी.
3: बिल्कुल बात कर रही थी. वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी, नहीं रुकूंगी,
2: क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना ऐसे.
0: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था. उस चैट से सब सामने भी आ रहा है और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है. आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से.
2: तो मुझे फ़ोन भी कर रही है, तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो. ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है. तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी. बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी. मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक, मिस यू टुक टुक. तो बोलती है वो समर्थ सिंह, उसको चिड़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता. अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी.

0: इस शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बिटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
0: जिसमें बेड़िया
1: जी
0: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
2: So you've heard Twisha's father's version, you've heard from the brother as well as the mother. Let's bring you the version coming in from the mother-in-law, who has blamed Twisha. She has said that she destroyed them in many ways. Let's just take you through some of the charges being made by the mother-in-law. Twisha subjected to mental tortures, what the family said, but then you have the in-laws counter saying Twisha visited a psychiatrist. They also go on to say that Pooja Pat was just a show, that Twisha took abortion pills and she consumed large amounts of marijuana is another claim being made by the mother-in-law. She also goes on to say that Twisha called Samarth, told him she had taken a pill, and that Twisha, like I said, visited a psychiatrist and attended counseling as well. Psychological pressure from the glamour world is another charge by the mother-in-law. She goes on to say, who benefited from that? Twisha's parents, that's how they would make their money. Twisha had shivering hands and there were withdrawal symptoms is her claim as well, and was taking a medicine for this. Twisha's behavior kept changing after a visit to Delhi, and young women take extreme steps easily is the claim being made by Giribala Singh, the retired judge who is Twisha's mother-in-law. The mother-in-law has blamed Twisha, claiming the puja pat conducted at home was merely a show. She alleged that Twisha had taken an abortion pill and had personally called Samarth to inform him about it. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world, which led her to visit a psychiatrist and attend counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and withdrawal symptoms while taking her medicine. So all these are charges being made by the mother-in-law, something that the family continues to counter.
3: कई तरीके के गंभीर आरोप हैं कि उसने आत्महत्या नहीं हत्या की है, आपके ऊपर समर्थ के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें?
4: देखिए, हत्या और आत्महत्या दोनों में बहुत फर्क है। जहां एक वॉलेंटरली कोई ऑफेंस करता है, इज इट पॉसिबल कि रात में जहां हम तीन लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति और चौथा कोई ना हो, देर इज़ नो क्वेश्चन, हम अपने खिलाफ क्यों एविडेंस इस तरह से करेंगे? वाई विल बी, अगर हमें वो बच्चा नहीं चाहिए था तो हम कितने बार, वो तो घर गई है, शी कुड हैव गॉन होम। तो उसका खुद का, लेकिन एक शिजोफ्रेनिक पर्सनैलिटी है, उसमें दो व्यक्ति होते हैं, तो ऐसा अगर हम सोचें कि रात में हम तीन ही लोग हैं, इज़ नॉट ट्रू, एक्चुअली देर वॉज अ फोर्थ पर्सन, और वो फोर्थ पर्सन उसके दिमाग में था, इसीलिए वो दिख रही है शाम के समय बैठ के टी वी देख रही है, फिर अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप से अकेले जा रही है, फिर उसके बाद वहाँ हम जब ऊपर गए उसका फ़ोन एक तरफ एंड शी वॉज देयर। तो ये खुद उसके बिहेवियर का कंट्रोवर्सी है, एक पल में खुश एक पल में नाराज़। इसकी दवाई पॉसिबल है उस शाम को उसने ना ली हो, दवाई का विड्रॉल के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको कभी भी दवाई जैसे दो, डोंट मोनिटर मी, डोंट फोर्स मी, आप क्यों खा खा के, मैंने यू वांट कि मैं भैंस हो जाऊं और सिर्फ बच्चा पैदा करूं। उसका कई बार ऐसा रहता, कई बार बोलती थी कि नहीं नहीं बच्चे तो होने चाहिए, फीस कितनी होगी, पूरा सब वो तरह की चर्चा करती थी। उसके अंदर ही ऐसी दो पर्सनालिटीज थी, एंड उसको इलाज के, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जो ज़रूरत थी, दैट वॉज वॉट वॉज नीडेड। एंड इट्स सो ईजी, कितने लोग कितने प्रेशर्स में रहते हैं, समर्थ हिमसेल्फ कितना प्रेशर रहा होगा टू अंडरस्टैंड कि उसका फर्स्ट इशू ये, ही हैज गॉन एंड अबॉर्टेड। लेकिन आदमियों के लिए इतना आसान नहीं है कि आंसू भी निकालें ऐसे मौके में, वो फिर भी आगे आते हैं कि हम इस परिवार को, इस मैरिज को बचा के रखें, क्योंकि हम शादी करके लाए हैं। तो वो काउंसलिंग से लेके जितना कर सकते

0: सकता था वो साथ में रहा, एंड उसके बाद फिर भी एक व्यक्ति ऐसा कदम ले, तो इसको क्या कहोगे फिर?
1: एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें सीढ़ियों पे सीपीआर आप लोग दे रहे हैं, परिजन दे रहे हैं
0: जी।
1: उसके पहले क्या हुआ और सीपीआर देने की बात, क्या ऊपर भी सीपीआर देने की कोशिश की थी आप लोगों ने?
0: बिल्कुल हुआ, वो रोता जा रहा था। वी ओपन दैट, आई मीन उसने बॉडी ऐसा ऊपर किया एंड आई ट्राइड टू रिमूव दिस थिंग, तो जैसे रिमूव किया वहीं का वहीं सीपीआर दिया, वहीं का वहीं पुश किया। मनु को जो बगल में बेटा है उसको बुलाया, गेट में दौड़ के खोली, गाड़ी निकाली, सिस्टर की गाड़ी भी निकाली, बिकॉज क्या है उतने बड़े पर्सन को लाना, दो सीढ़ी पार करते हुए, सीढ़ी का घुमाव इतने रहते हैं, इट इज़ सो डिफिकल्ट। आप माने इट्स सो ट्रैजिक, और इस ऑल बिटवीन ऑल ऑफ दिस हमें क्रिमिनल बताया जा रहा है।
1: कह रहे हैं कि माँ से बात करी थी, अचानक फ़ोन कट गया, फिर मौत की खबर आती है। व्हाट्सएप चैट में कई तरीके के आरोप हैं कि वो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं और वो यहाँ से जाना चाहती हैं। दहेज प्रताड़ना को लेकर बात हो रही है, कुछ पैसे आप लोग मांग रहे थे, आरोप है, इस पर क्या कहेंगे?
0: कितना मांग रहे थे? उनका FIR में तो 2 लाख लिखा है और हमने तो उल्टा 7.5-8 लाख रुपए उनको दिए हैं, तो वेयर इज द क्वेश्चन?
1: बात के लिए इतने पैसे आपने दिए
0: उनका? देखो फर्स्ट टाइम तो शादी से पहले उसने कहा था मेरी जॉब छूट गई, शादी में उसको प्रेपरेशन के लिए भी जरूरत थी पैसे, समर्थ ने कुछ उस समय दिए थे, उसके बाद शादी के बाद भी दिए थे बिकॉज शी सेड सैलरी नहीं आ रही है। उसके बाद आई नो सम ऑफ दैट मनी बिकॉज हनीमून में भी खर्च हुआ होगा, मे बी 1-1.5 लाख खर्च हुआ होगा। बाकी और उसके जो भी एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके ब्रदर की शादी थी मार्च में, उसको अपने लिए भी कुछ बनाना होगा, करना होगा, तो वॉट एवर शी नीडेड, टिकट्स बुक करने, वॉट एवर शी नीडेड, पैसों को लेकर तो कभी देयर वाज नो क्वेश्चन, वी हैव ऑलवेज गिवन, तो लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है।
2: So for a 360 degree perspective, we brought you the claims being made by Thwisha's family, the claims being made by the in-laws. I want to now go to Anurag, who's standing by in Bhopal. Anurag, let's talk about where the investigations stand as well. Many would say that there have been lapses in the probe already, starting with that nylon belt, which was not present in the autopsy room when the first autopsy took place. This also indicates huge lapses when it comes to the investigation. How does one trust this investigation then, Anurag?
3: Yes, Vedika, a very important, crucial piece of evidence, and we discussed this yesterday also, because had the belt been produced during the post-mortem, it could have helped determine whether the marks found on Trisha's neck were caused by that very belt. The nylon belt seized by the police should have been presented before the hospital at the time of the post-mortem. It's with texture and structure could have been matched with the ligature marks on Trisha's neck to scientifically examine whether it was capable of being used for hanging and whether the injuries were consistent with it. A DNA examination of that particular belt could have been conducted at that stage. Investigators could have, you know, further established what the belt was normally used for and whether it bore any, you know, biological or forensic, you know, traces relevant to the case. And Trisha's neck, this is also very important, had two parallel ligature marks. In the absence of the belt...
2: You there, because very quickly a follow-up question on this itself. What is the police saying about the absence of the belt on day one of the autopsy?
3: Vedika, now the police is saying that they will investigate the matter, and on the second day, that very belt was submitted at the you know, AIIMS Bhopal for further forensic examination. But I just wanted to tell you something more. I mean, the controversy did not end with the missing belt. There are also serious discrepancies in the police FIR. The FIR, we have a copy of the FIR, states that Trisha's body was handed over to the parents for final rites, but the body is still inside the AIIMS mortuary. It's been almost 7 days. And in another discrepancy, Trisha's age is mentioned around 31 years in one section, but twice in the FIR, it was mentioned 33 years.
2: All right, Anurag, thanks for joining me live. That this, of course, remains our top focus, justice for Thwisha. Who failed Thwisha is something we will focus on even at 1 p.m. Thwisha was found dead in Bhopal just days before she was supposed to return to her house in Noida in Uttar Pradesh. Her family alleges murder, while police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide. Here's a report.

0: upstairs. That's the, you know, that's why we had to check the CCTV, ki exactly where was she at that point. The next day after everything, then we checked and then we saw that she's going upstairs at 9:40. And because we didn't find her in the bedroom, we didn't. She found that she was not responding to the phone calls. It is then immediately when we rushed upstairs and we saw that the earbuds, they were away, her phone was away, and she was hanging. That was a huge tragedy for all of us. And while we try and see that she gets peace, so I think all of this is
1: missing. Where is your son? Let me ask you that pointed question. You're a former judge yourself. He is an advocate. Why is he not facing the law? Why is he not at home? Why isn't the police asking him questions? Why is he absconding, Ms. Singh? You're a former judge. Your son is an advocate. Shouldn't he be facing the questions that the law has for him?
0: Definitely he should be, and he will.
1: But so where is he today?
0: The law. His advocate also knows the law. He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies, and his advocate will best guide him and us how we can proceed further.
1: But Ms. Singh, if you're saying this is not a case of dowry, this is not a case of harassment, Ms. Singh, you should be held accountable right now. Do speak to us for 5 minutes because I want to understand from you your version. We've heard from the family, but if your son is not speaking with the police, why isn't he surrendering at the moment? He should be facing the law. He should be taking questions from the investigators if he has nothing to hide, ma'am.
0: Madam, he is the one who handed over all the documents. All the seizures are from him. He has been completely cooperating till the time that they formally launched an FIR, which was not even, I mean, there was no matter to lodge an FIR. And after that, of course, because he is a citizen of India, he has the right to exhaust his constitutional remedies instead of going to jail. The Supreme Court in Umar Khalid has also said that bail is the rule and jail is an exception. Even terrorists, even UAPA criminals, all of them, they are entitled to bail. Why would he not exhaust his remedies, madam? And he would be ready to answer everything once the system is there to support him. It is he and me who will require a long-term psychiatric treatment after this entire trauma is over. I do hope you understand, and I hope you will bear with us and let us live and fight our cases, because now the case is there. We need to protect ourselves too, as any citizen.
1: But protect yourself from what, Ms. Singh? Because you're saying there has been no dowry harassment. There is no role that your family has played when it comes to Twisha's death. So why not face the law? Why stay
0: Madam,
1: away?
0: You're going around in circles.
1: Because I want an answer from you, Ms. Singh. You are a former judge yourself. There's an award of 10,000 rupees now for whoever finds your son. What do you have to say about that? His anticipatory bail plea has been cancelled, ma'am.
0: That is something which, madam, that is true, but does he not have a right? Are you trying to tell me he does not have a right to approach the High Court?
1: Of course he does, but my question to you is, if there's nothing to hide, why shouldn't your son come before the law and surrender?
0: So are you trying to tell me he should go to jail?
1: No, I'm trying to tell you that since you have taken the stand, that you have nothing to do with the death of the daughter-in-law, nor does your son, and the anticipatory bail plea has been cancelled because of the mysterious circumstances under which your daughter-in-law has died, why isn't your son coming before the investigating agencies? A very simple question, ma'am.
0: Madam, he will be definitely there, provided he gets the protection against being sent to custody. 100% he will be there for everything. He has been and he will continue to be there. We ourselves would like to support this whole matter and see that there is a clean and fair investigation, and not an investigation which is thrown to the media, which is there out in the streets with people raving and ranting and following little groups and Twitter groups. We have our limitations, and it is they who have put us in this corner. And now we are being hunted like fugitives, which is completely wrong.
1: Ms. Singh, I want to ask you, you have also gone on to say, Ms. Singh, for a moment, please, I have another question for you. All right, missing, they're disconnecting the line, but there are a couple of questions we had for her. My next would have been, what proof does she have when it comes to the allegation that her daughter-in-law consumed marijuana? But we'll try and get in touch with her once again. But no concrete answers when it comes to one simple question. When it comes to the mother-in-law of Tricia, where is her son? Why is he on the run? Let's just listen in to what Tricia's parents had to say to my colleague sometime back earlier this morning. NDTV had a conversation with a very emotional family. Listen in.
2: Rekha ji, aapke chats Tricia ke saath public domain mein hain. Bahut sari baatein Tricia aapse kara karti thi. Ab jab aap peeche mudke dekhti hain, sabse pehle kya ehsaas hota hai? Kya aapko turant usse bula lena chahiye tha? Kyun deri kar diya?
3: देखो हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को, जब हमने टिकट कराई थी उनकी, गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो, यदि आप अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चल हम अभी नहीं आते, तो हमें बता देना फिर हम बाद में आ जाएंगे. बंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
2: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ Tricia शेयर करती थी उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
4: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी, ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम
2: करना. आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे क्या आप क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए.
3: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप. यही वाला मेरे को हो रहा है.
4: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था, हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था. ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया.
3: पर घर में जाऊँगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं.
2: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या Tricia के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
3: हाँ वो ऐसा बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊँगी. तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊँगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूँगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊँगी, नहीं तो मेरे को तलाक.
2: निकलना चाहती थी?
3: हाँ जी.
2: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी?
4: बिल्कुल बात कर रही थी. वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
3: नहीं रुकूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है ऐसे.
2: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है. और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है. आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से.
3: जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो. ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है. तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक. तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिड़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता. अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी.

0: त्रिशा के भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षित, आपके पेरेंट्स से लगातार सब बात कर रहे हैं, आज आप आगे आकर त्रिशा के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए त्रिशा का इंसाफ कैसा दिखता है?
1: मैम, बहुत कठिन दिखता है, बिकॉज अभी तक जितनी हमें परेशानियाँ आई हैं हमारे अभी तक सफ़र में, 7 दिन में, पिछले 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज वर रियली हैविक। फाइलिंग दैट FIR आफ्टर 3 डेज ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट, वेर इन माई पेरेंट्स, वन वो इज़ 61 ईयर ओल्ड, एंजियोग्राफी हुई है उनकी, माई मदर इज़ इनकंसोलेबल, एंड वी वर रनिंग अराउंड द स्ट्रीट्स जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू लिसन टू अस। सो फॉर द फर्स्ट 3 डेज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, but we are here to fight and we will be fighting. They are part of the system, we will fight against the system.
2: Anurag joining me live from Bhopal. Anurag, of course, emotions running high, the family extremely distraught, but let's just stick to the facts of the case as well. I just spoke with the mother-in-law of Twisha. The bottom line is, if there's nothing to hide, where is her son? That is the question she refused to really give us an answer to. But the anticipatory bail plea also being rejected when it comes to the son. Why isn't he coming forward? Why isn't he cooperating with the investigations? And that too, what seems to be a botched up investigations on many fronts.
3: Yes, true, Vedika, a criminal lawyer by profession, a graduate from the prestigious National Law University there in Bangalore. And, you know, he... earlier also advised Madhya Pradesh government on various matter. So that's the biggest question, that where is Samad Singh? Police has now declared a cash reward of 10,000 rupees on his head, but he is absconding. You know, once the FIR was filed, the police should have arrested him, but they have given him a long rope that he applied for anticipatory bail. Yesterday, his anticipatory bail plea was also rejected by the court, and he's still absconding. But I was listening to the mother-in-law of Twisha, and she also mentioned about the CCTV footage. You also asked questions about the CCTV footage. That also added a new layer to the ongoing investigation, because Twisha can be seen walking towards the terrace of the house before her death. And she is climbing the stairs at around 7:20 p.m. Later, 3 people can be seen bringing her body down. But as for the statement made by the family, she has gone to the beauty parlor. So these were the questions. I mean, if Samarth, if he's there in the police custody, they would have asked him a few pertinent questions. And in one frame, you can see a young man wearing a yellow T-shirt is, you know, kneeling on the staircase. Apparently, that's what we can gather from that CCTV footage, attempting to administer CPR. And Giribala Singh can also be seen opening a gate located near the staircase, moving through it. Soon after her, a young man wearing a blue shirt is also seen going upstairs. And then the footage shows 3 men bringing Trisha's body downstairs.
2: All right. And Anurag, also a very... a big claim being made by the mother-in-law there that Twisha used to consume marijuana, especially while she was pregnant. But the question here is, where is the proof when it comes to such a strong claim being made by the mother-in-law and the family?
3: Yes, not only Giribala Singh, but Samar Singh also made the same claim in his anticipatory bail plea. They have clearly said that Twisha was addicted to drugs, marijuana, suffered from mental instability, and was undergoing psychiatric treatment. But one also very important piece of information, because she mentioned 2 names, Dr. Satyakant Trivedi and Kakoli Roy. We spoke to Kakoli Roy, and she has clearly denied any knowledge of treating Twisha Singh. That is also something very important, though she has added if something comes from police, then only she will tell more about the case. But over the phone, she has clearly denied treating Twisha. And according to the plea of both Giribala Singh and his son, Twisha allegedly displayed withdrawal symptoms when deprived of narcotics. She was being treated, as I said, by noted psychiatrist here, Dr. Satyakant Trivedi. She was also referred to counselor Kakoli Roy, and she has denied that she was treating, Twisha when we called her up. And her behavior reportedly changes significantly after pregnancy and later miscarriage. And they also claimed both the son and mother-in-law that no dowry was ever demanded.
2: Yes.
3: And they regularly supported her financially also.
2: All right, Anurag, thanks for joining us there. We, of course, will keep a track on all the twists, turns, developments when it comes to this story. NDTV's managing editor Shiva Roor had an exclusive conversation with Twisha's father where he called Twisha's husband, quote-unquote, a wolf in sheep's clothing.
4: जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
5: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंड सेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पर जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी. एक्चुअली बेटियाँ है ना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई.
4: त्विशा वापस आना चाहती थी
5: कि जिसमें भेड़िया
4: जी
5: आना चाहती थी सर. ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर. दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड. बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी. तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है. पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे.
2: While an unsettling lapse on the police's part has come forward in the Twisha Sharma death probe as calls for justice in the case span from Delhi to Bhopal and across the country, Twisha had a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings, which has ended in tragedy. Here's a report.
6: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Twisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Twisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Twisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Twisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Twisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Twisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl
7: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार, पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है। ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए। 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
6: Now, as investigators piece together the events leading up to her death, questions continue to grow around the circumstances of Twisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. Bureau Report, NDTV.
2: Let's also bring you the latest in the Deepika case. The probe has intensified in the Greater Noida dowry case. A hematoma, which is a blood clot, was found in the middle and left side of Deepika's brain. The spleen was found ruptured. The left kidney was found in a pale condition. The chambers of the heart were found empty. Bleeding was found in various parts of the body. These are, of course, disturbing details that we're bringing to you. This is the case pertaining to Greater Noida, a dowry case where Deepika ended her life on the 17th of May. The family alleging that this is a case of dowry. The husband and father-in-law have already been arrested. But these are the details we bring to you as the probe intensifies into the case. A hematoma was found in the middle and left side of Deepika's brain. The spleen was found ruptured and the left kidney was found in a pale condition. And that's the latest that we have for you in terms of the probe. Petrol and diesel prices have increased by around 90 paise per litre, marking the second fuel price hike in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98.64 per litre, up from 97.77. Across metros, fuel prices saw similar increases. In Mumbai, petrol rose by 91 paise to 107.59 per litre. Kolkata recorded the sharpest petrol hike of 96 paise, taking the price to 109.7 per litre, while diesel has increased to 91.58. from 90.67 in Delhi and 94 paise to 96.07 in Chennai. The latest revision comes days after fuel prices were raised by 3 rupees per litre on Friday amid rising crude oil prices. Bringing you these reports.
8: क्या नाम है आपका?
9: अमित नाम है जी.
8: अमित भाई, कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, टैंक फुल करवा लेते हैं आसानी से?
9: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी. टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा इस महंगाई में? टैंक कहाँ से फुल हो जाएगा? जब महंगाई हो रही है तो कहाँ टैंक फुल होगा?
8: प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे?
9: मैं मोदी जी से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको भी तो अपने ऊपर भी तो ये रूल, जब आम आदमी के ऊपर ये रूल वो लागू कर रहे हैं तो उनको खुद भी तो फॉलो करना चाहिए.
8: पड़ रहा है आम आदमी के पॉकेट पे, जनता पे कितना?
9: बहुत फ़र्क पड़ रहा है.
8: फ्राइडे का रोज़ देखा था 3 रुपये बढ़े थे, फिर जो है 87 पैसे बढ़ गए हैं, तकरीबन 4 रुपये के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गए. क्या संदेश है देशवासियों के लिए?
10: इसमें यही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा.
8: पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, आमतौर पर जितने लोग पेट्रोल पे आते हैं, पेट्रोल पंप पे आपके आते हैं, उतने ही आ रहे हैं या भीड़ कम हुई है या बढ़ी है?
11: फिलहाल तो कुछ कम हुए हैं, ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले कम ही हो रहे हैं.
12: We've been hopping around different petrol pumps and fuel stations since morning, but what we've noticed is that the number of people has gone down considerably in the last few hours. It might just be coincidental, but might also be reflective of the price rise that one is witnessing here in Mumbai. Kya kehna chahoge aap petrol rise ke?
13: Nahi, abhi ye chalu hai sab, ye yuddh wagaira sab to badhega hi na.
12: Aapko expected?
13: Expected tha.
12: जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंग
13: बढ़ने वाले हैं,
12: फिर मतलब अपने घर पे जो खाना आता है.
13: लेकिन अभी क्या है, ये इंटरनेशनल मामला है, सब
14: क्या करेगा, सब जगह वही कंडीशन है, तो इधर भी है, बम्बई में भी है, क्या बड़ी बात है.
15: प्राइस या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो अभी उधर वार चालू है उसका इफेक्ट इंडिया को हो गया है, उसका इफेक्ट तो इंडिया को होगा ना.
16: राइट नाउ वी आर एट वन ऑफ द बिजिएस्ट पेट्रोल पंप्स इन चेन्नई. Less than a week, for a second time, petrol and diesel prices have gone up. As far as Chennai is concerned, petrol prices have increased by 82 paise to 104.49 per litre, while diesel prices have gone up by 86 paise to
17: 96.11 per litre. என்ன பண்ணுவேன் எவ்வளோ இன்னைக்கு தானா
16: ஓகே ஸோ தீஸ் ஜென்ரல் ப்ரைஸஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் ஷாக் ஓவர் த சடன் இன்க்ரீஸ் இன் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ப்ரைஸஸ் ஐ திங்க் திஸ் வில் அஃபெக்ட் ஜென்ரல் பப்ளிக் லைக்
15: திஸ் வில் அஃபெக்ட் ஜென்ரல் பப்ளிக் பட் பீப்புள் ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் ஆன்ஸ் அதர் ஏரியாஸ் லெட் தம் ஸ்பெண்ட் ஃபார் திஸ் பெட்ரோல்
18: Once again, there has been hike in fuel prices across the country. There has been increase of 90 paisa on diesel and petrol price. It has more to do with the disruption in Strait of Hormuz because ever since there has been West Asia conflict, we have seen the price of the crude oil is increasing. And that's really putting hole in the pocket of the common man. Let me talk to the people here at the petrol pump here in Jammu and try to find out how their budget has been impacted because of this rise in the fuel prices. Kaise iska asar pad raha hai aapke budget pe jo ye petrol ke prices badh rahe hain aur daam?
19: मिल जाता है थोड़ी कम चलाएंगे गाड़ी और क्या हो सकता है तो कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना
18: कैसे देख रहे हैं जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं आज फिर से तेल के दाम बढ़ गए
19: आज फिर बढ़ी है
18: आज फिर से बढ़ गए 90 पैसा डीजल और पेट्रोल के
19: 90 पहले
18: 30 रुपए बढ़े थे
19: चलो ऐसा सब बढ़ने ही है क्या करना है
18: इतनी मुश्किल हो जा रही है इसकी वजह से जो तेल के
19: मुश्किल तो बहुत है पर हल कोई नहीं है इसका
20: सर एक्चुअली हमें कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ एज यू नो कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है जो मिडल ईस्ट में द वॉर बिटवीन द ईरान एंड द अमेरिका
21: प्लीज टेल अस व्हाट इट विल इफेक्ट ऑन योर बजट द प्राइस हैज बीन हाइक्ड बाय 90 पैसा
22: बजट तो ऐसे बहुत वो हो रहा है क्योंकि एज अ कॉमन स्टूडेंट हम लोग को मतलब फ्यूल के लिए कंजप्शन भी बहुत और जनरली मिल भी नहीं रहा उस तरीके से कहीं 108 कहीं 109 और जो पिछला जो रेट था जिस हिसाब से वर्ल्ड का चल रहा है सिचुएशन उस हिसाब से और लग रहा है कि फिर इंक्रीज ही होते जाएगा
23: दाम तो डेली बढ़ ही रहा है
21: कुछ असर पड़ रहा है दाम बढ़ने से
23: असर तो सबको पड़ेगा हमको अकेले थोड़ी पड़ेगा
24: 300 रुपये में टंकी फुल होता था 500 रुपये में टंकी फुल हो रही है बताइए पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा ना
25: अभी तो पैनिक का माहौल नहीं है लेकिन ऐसे बढ़ रहा है तो लगता है कि कुछ दिनों में सारे काम पे इफेक्शन तो जरूर पड़ेगी
26: बाकी लोग को तेल भराने में 10,000-5,000 कोई मायने नहीं रखता है लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली को 5,000-10,000 उन लोग के लिए थोड़ा सा इफेक्ट होता है
27: डीजल बढ़ने से हम लोग के माने अब गाड़ी बैठ जाएगा चलना बंद हो जाएगा
2: एंड यस्टरडे द यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सेड he spoke on the price rise rather and how for the past 4 years the prices of petrol and diesel were not increased by even a single penny and there's been a minimal change compared to global fuel prices listen in
28: mujhe bahut khushi hai aapko ye batate hue ki bharat ek aisa desh hai vishwa bhar mein jisme na kacche tel ki na pipe natural gas ki na lpg ki koi kami humne hone di एन समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं कम भी किए हैं
2: All right, let's take you through some graphics to explain to you what happens when there is a hike in fuel prices. What does it impact? Of course, when it comes to transport, that's the first thing to be impacted given the rise in fuel prices, be it petrol or diesel. Food prices also may go up for the simple reason that it takes transportation even to take the food from one area to the other for selling it and for consumption. Vegetables, milk to get costlier, bus, taxi and auto fares may also increase because of the cascading effect when it comes to a fuel price rise, be it petrol or diesel. Online delivery charges may also be impacted. Airfares could turn costlier as well. Logistics, of course, freight costs will jump as well. Inflationary pressure to increase is the other concern at this point and manufacturing costs may rise as well. Prices of essential goods may climb. Agricultural sector can also face the heat. This is all due to the price rise that you see in fuel prices that have taken place 2 times within the last 7 years. days. Now, political showdown has begun over the second fuel price rise in only 4 days. Opposition leaders have slammed the government over constant price hike. Rahul Gandhi slammed the government over this hike and said that an economic shock is coming, but it's sad that people will have to face the brunt. Opposition is up in arms against the centre over this hike. Let's just listen in to some of the reactions coming in. All of this, of course, is connected to the ongoing conflict that is taking place in Iran.
0: Modi ji ne jo economy par ka structure jo badla hai.

0: ये जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पर काफी स्प्रेड हो रही है। उस पे को देखते हुए जो मैंने देखा तो उसमें हूबहू 45 out of 45 क्वेश्चन जो थे वो पेपर से मैच कर रहे थे। देन आफ्टर हमने फिर बायोलॉजी की पीडीएफ को भी मेरे साथी जो टीचर हैं उनको हमने बोला, तो उन्होंने भी बायोलॉजी की पीडीएफ को टैली किया तो उनको भी पता चला कि यार 90 out of 90 क्वेश्चन जो हैं वो मैच कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने इस बारे में पूरा डिस्कशन करने के बाद हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे हैं, उनको इस बारे में बताया है कि कैसे ये चीजें हो रही है, तो उन्होंने भी समझने की कोशिश उसे पूरी करी थी। और जैसे एसपी सर है उन्होंने भी हमें अच्छा गाइड किया था कि हम इस मैटर को पूरे इंडिया लेवल पे कैसे अपना इस पे कर सकते हैं। और फिर हमने एनटीए को और सीबीआई को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
1: जी
0: को मेल के थ्रू
1: शशिकांत जी,
0: उनको
1: ये जो गेस्ट पेपर था वो आपके पास कैसे आया था, स्टूडेंट्स के थ्रू, कि आपको ये पेपर कहाँ से मिला, द गेस्ट
0: मेरे
1: पेपर?
0: किसी नो मेरा कोई नॉन था उसने मुझे दिखाया था, स्टूडेंट के थ्रू नहीं आया था। हमारे कोई नॉन थे जो हमारे साथ ही रहते हैं उन्होंने दिखाया था कि उनके पास ये पिछले 2 तारीख को आ गया था, मतलब एक दिन पहले आ गया था। तो
1: जी
0: ऐसे फिर हमने प्रूफ कुछ अच्छे प्रूफ लेके, ताकि मतलब एनटी हमारी बात पे थोड़ा गौर फरमाए,
1: जी
0: ऐसे कुछ प्रूफ लेकर हमने उनसे फिर हमने मेल के थ्रू हमने ये चीजें शिकायत करी
1: जी
0: इसकी।
1: तो आप रात 1:30 बजे पुलिस स्टेशन जाने का आपने फैसला क्यों लिया?
0: क्योंकि चीजों को मतलब ऐसा है कि जितना जल्दी मतलब ये हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे पैनिक होते हैं इन चीजों से कि चीजें बाहर नहीं निकले उससे पहले, मतलब जैसे कहते हैं र्यूमर्स नहीं फैले अपने, कोई भी र्यूमर्स स्प्रेड नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये डिसीजन लिया गया कि हम आज ही जो अपन कर सकते हैं वो कार्रवाई हम आज करते हैं। तो फिर हम रात को ही थाने पहुंच गए थे उसके लिए।
1: शशिकांत जी, आपने लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज की थी? क्या किसी तरह का डर था आपको?
0: नहीं मैम, डर वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें, डर का ऐसा कोई माहौल नहीं था, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी जो हार्ड वर्किंग है वो हार्ड वर्किंग ने हमें मतलब इसके लिए मोटिवेट किया ना, तो कि बच्चे की जो हार्ड वर्किंग है वो खराब नहीं हो,
1: तो
0: वो
1: फिर
0: बच्चे की
1: एफआईआर
0: दया नहीं
1: दर्ज क्यों
0: करे।
1: नहीं किया आपने?
0: एफआईआर दर्ज करने के लिए ऐसा था मैम कि हम जब एफआईआर दर्ज करवाने गए थे तो हमारे पास पूरे उसके लिए फुल प्रूफ प्रूफ नहीं थे, तो फिर हमने 2-3 दिन प्रूफ जुटाने के बाद एफआईआर नहीं करके सीधा एनटीए को, ज्यादा बढ़िया रहा कि एनटीए को हमने मेल वगैरह कर दिया और उनसे क्योंकि रिस्पॉन्स आया तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी एफआईआर वगैरह करवाने की।
1: शशिकांत जी, आपको कोई दबाव, आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन? क्या आपको किसी दबाव या
0: नो मैम,
1: धमकी का
0: मुझे
1: सामना
0: अभी
1: करना
0: तक
1: पड़ रहा है अभी?
0: नहीं मैम, अभी तक मुझे मतलब स्टार्टिंग से लेकर इतने दिन बीत गए हैं, लगभग 15 डेज हो चुके हैं इस चीज को, अभी तक किसी से कोई धमकी या किसी से कोई दबाव या किसी के कोई प्रेशर मुझ पे नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इन बातों से नहीं डर रहा हूँ। और जो होगा मतलब वो अच्छे के लिए होगा, और
1: जी
0: जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, तो किसी
1: बिल्कुल
0: न किसी को तो ये स्टेप उठाना ही चाहिए था, और भगवान ने मुझे जरिया बनाया है उन बच्चों की मेहनत को जाया नहीं देने के लिए, तो उसका भी शुक्रिया करना चाहूंगा मैं, धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान का भी कि जिन्होंने मुझे इसके लिए काबिल बनाया कि मैं ऐसा काम कर सकूं।
1: शशिकांत जी, ये बहुत बड़ा वेब है, अरेस्ट हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अंदरूनी लोग की मिली भगत हो सकती है? दैट इंटरनली अ लॉट ऑफ पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस लीक, ऑफ दिस
0: मैम
1: नेटवर्क?
0: ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंडर प्रोसेस है तो मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। लगने से मैम देश में चीजें नहीं चलती है कि मुझे लगता है इसलिए ये चीजें चल रही है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो हम सबके सामने ये सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी।
1: तो आपने कहा एनटीए को भी आपने ईमेल किया था, क्या सबूत भेजे थे आपने?
0: हमने सारे वाक्य जो भी हमने मतलब जितने हमने सबूत निकाल पाए थे, जितने हमने नेम इसमें डिनोट कर पाए थे, वो सारी चीजें हमने एनटीए को मेल के थ्रू बताई थी। उनको जब लगा कि हाँ मैटर सीरियस है, ये जो मतलब मेल में कह रहे हैं वो सच हो सकता है, तो फिर एनटीए से अभिषेक सिंह जी का मेरे पास फोन आता है, मतलब विद इन 2 to 3 आवर्स ही एनटीए इसमें एक्शन लेता है, और मेरे पास उनका फोन आता है, फोन पे सारी जानकारी वो लेते हैं, और फिर सीबीआई से भी फोन आता है, और 2 to मतलब 5 to 6 आवर के बाद हमारे पास दिल्ली से टीम आ जाती है, वो सारे हमने फिजिकल जो भी हमारे पास प्रूफ थे वो उनको दिए, फिर इसमें ऐसा

0: जी वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है बहुत जल्दी, मतलब फास्ट ट्रैक काम हुआ है ये,
1: मगर
0: कोई काम
1: आपको
0: नहीं मैं
1: कभी
0: सरकार
1: लगता
0: नहीं
1: है
0: करता
1: कि
0: हूँ।
1: आप कभी सोचते शशिकांत जी, अगर आपने ये एक्सपोज नहीं किया होता, ये पूरा मामला आप सामने नहीं लाते, तो ये मामला शायद दब जाता, इट वोंट हैव बीन एक्सपोज्ड?
0: मे बी मैम, मे बी ऐसा हो सकता था कि अगर, मतलब ऐसा हो सकता था कि कोई भी इसके लिए नहीं करता, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे थ्रेड वगैरह होते हैं जिनका डर लोगों को लगता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनका डर लोगों को लगता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है इन सब का, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि एज ए टीचर होने के नाते मेरा ये मतलब एथिक बनते हैं, मेरा ये ड्यूटी बनती है कि
1: जी
0: मैं इन चीजों, बच्चों के जो हार्ड वर्किंग है उसको सिक्योर करूं, ताकि बच्चे आगे भी हार्ड वर्किंग करने के लिए बच्चे पीछे नहीं हटे।
1: वी रनिंग आउट ऑफ टाइम शशिकांत जी, बिफोर आई लेट यू गो, आपके मुताबिक इस पूरे नीट सिस्टम में सबसे बड़ी खामी क्या है?
0: मैं तो इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस स्तर पे नहीं हूं अभी कि मैं इतना सोच पाऊं कि क्या कमी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हम बहुत मतलब छोटे इंसान हैं और
1: जी
0: बहुत कम एजुकेशन है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मतलब
1: शशिकांत जी,
0: हमारे
1: आप अपने
0: सिस्टम
1: आप
0: में
1: को
0: हैं।
1: छोटे इंसान बोल रहे हैं, बट टुडे यू आर द विसल ब्लोअर, द मैन हु हैज एक्सपोज द रॉट विद इन द सिस्टम. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स हेल्ड इन द कंट्री, एंड द नेटवर्क बिहाइंड इट, द लीक हैज बीन सो मैसिव. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बींग ब्रेव इनफ, फॉर गोइंग इन द मिडल ऑफ द नाइट टू द पुलिस स्टेशन, फॉर फॉलोइंग दिस अप एंड टेकिंग इट टू द NTA एंड टू द CBI. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस हियर ऑन NDTV. थैंक यू फॉर योर टाइम.
0: Thank you, ma'am.
1: On that note, we're sipping a short break. News and updates on the other side. I'll be back with more. Stay tuned.

0: 87 paisa has increased on the petrol prices, and 0.91 paise has increased on the diesel prices. Right now we have arrived at a petrol pump in the East Delhi area. This is the Mayur area of the national capital, where you can see the visuals over here. This is early morning, so right now we have less crowd, and slowly and gradually when the day will start, more people will arrive at the very petrol pump. I'm going to speak to the staff members over here. क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है।
0: धर्मेंद्र भाई, ये बताइए कि कितना पैसा बढ़ा है डीजल में और पेट्रोल में?
1: पेट्रोल में बढ़ा है सर 87 पैसे और डीजल में बढ़ा है 91 पैसे।
0: डीजल में 91 पैसे।
1: 91।
0: सर मीटर दिखाएं, है ये 98.64 98.64 है ना? ये जो है वो नया वाला
1: है। हाँ, नया वाला आज का रेट है।
0: ये जो प्रभाव है कितना पड़ रहा है लोगों पे?
1: अब देख रहे हो आप, पंप खाली नजर आ रहा है, वैसे भी प्रभाव तो पड़ेगा।
0: का वक्त है, सुबह का वक्त है,
1: फिर भी प्रभाव तो कम ही है पहले से।
0: अच्छा ये बताइए, इस वीक हमने देखा है कि जो फ्राइडे था, फ्राइडे को शुक्रवार के रोज जो है पहले दाम बढ़ा, 3 रुपये बढ़ा है ना, डीजल पे भी पेट्रोल पे भी। उसके बाद CNG पे हमने देखा कि CNG पे पर KG 2 रुपये बढ़ा, फिर उसके 2 दिनों के बाद जो है 1 रुपये फिर बढ़ गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपये उस पर भी बढ़ गए हैं, है ना। ये औसतन अगर आप देखें तो कितना फ़र्क पड़ा है लोगों को? लोग आ रहे हैं, कम हो रहा है?
1: नहीं, लोग तो आ ही रहे हैं बरकरार, वैसे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
0: नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, है ना, अपनी गाड़ी, कितना फ़र्क पड़ा है?
1: मान लो करीब 20% तो पड़ गया, 20 से 25%। 20%
0: लोग अपनी गाड़ियाँ कम यूज़
1: कर रहे हैं, मेट्रो से और यहाँ ट्रांसपोर्ट
0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा, मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हे यू सी दिव्या, वी हैव गॉट द वॉइस द पेट्रोल पंप।
2: कम बैक टू यू। वी आल्सो यू नो नीड टू गो अक्रॉस टू दानिश आनंद, you know, from NDTV's Profit. Danish, you know, as far as the Ukraine-Russia war was concerned, we saw that the petrol prices in India were not changed. In fact, this time around as well, when the Iran war started, it was the pricing here in India remained the same. But all that has changed. We're seeing the second change coming about in 4 days' time.
3: Correct. And the major reason for this is the crude oil prices, they are still above $100 a barrel. And this is creating an impact on the OMCs to import crude oil to India and to process it further. Plus, it is also a double whammy for the industry, because we are seeing that even the US, if we compare rupee with the US dollar, even rupee is at the downside. So when these OMCs are importing crude, A, they are at already at an elevated level, and then the rupee-dollar parity is also not in rupee's favor. So that is why the overall import bill is increasing. And until yesterday, until last week, in fact, OMCs are making losses of 1,000 crore rupees per day. But as per the latest figures shared by the Ministry of Petroleum, now these daily losses have come down to 750 crore rupees per day. But now, with these small price hikes, that the OMCs will take, their losses will definitely...

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।

0: All right, let's now focus on our on the story of Twisha, the Delhi girl who died in Bhopal. And lots of questions have been raised. NDTV Sikta Deo is there in Bhopal. Over to you, Sikta, for all the very latest.
1: Hello and welcome to this special show from Bhopal. In a major development in the Twisha Sharma death case, the husband's, Samarth Singh's, bail plea has been rejected by the court. As a probe into the death of Twisha's under unnatural circumstances picks up pace, Samarth continues to be on the run and a reward of 10,000 rupees is announced for him and a passport cancellation proceedings initiated against him too. Meanwhile, Twisha's family has expressed a demand for a second autopsy, considering the sequence of events which led to Twisha's death. As per reports, the alleged belt which was used for hanging was not even brought to the hospital by the investigating officer. For matching the ligature marks on Twisha's neck, the family wants the body to be transferred to AIIMS Delhi for the Supreme Court monitored probe and a second autopsy before the body decomposes. NDTV has spoken exclusively to Twisha Sharma's parents and her brother. They have made serious allegations against her husband Samarth Singh and the family. Listen in to this conversation. Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं. बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी. अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
2: नहीं, वो हम तो लेने जा रहे थे. 13 तारीख को भी हमने टिकट कराई थी. उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो. यदि आप अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी, या आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चलो हम अभी नहीं आते, तू हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. पंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
1: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
3: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली. उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो. क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसी क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी. ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम करना.
1: आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या आप क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए.
2: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप. यही वाला मेरे को हो रहा है.
3: उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था. हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था. ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया.
2: पर घर में जाऊंगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं.
1: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
2: हाँ, वो इस बार बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी. तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक
1: निकलना चाहती थी.
2: हाँ जी,
1: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी.
3: बिल्कुल बात कर रही थी. वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
2: नहीं रुकूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है इसे.
1: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है, और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से
2: मुझे फ़ोन भी कर रही है, तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो। ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है, तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक, तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिड़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता। अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी।

0: त्रिशा के भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षित, आपके पेरेंट्स से लगातार सब बात कर रहे हैं, आज आप आगे आकर त्रिशा के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए त्रिशा का इंसाफ कैसा दिखता है?
1: मैम, बहुत कठिन दिखता है, बिकॉज अभी तक जितनी हमें परेशानियाँ आई हैं हमारे अभी तक सफ़र में, 7 दिन में, पिछले 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज वर रियली हैविक। फाइलिंग दैट FIR आफ्टर 3 डेज ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट, वेर इन माई पेरेंट्स, वन वो इज अ 61 ईयर ओल्ड, एंजियोग्राफी हुई है उनकी, माई मदर इज़ इनकंसोलेबल, एंड वी वर रनिंग अराउंड द स्ट्रीट्स जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू लिसन टू अस। सो फॉर द फर्स्ट 3 डेज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बट वी आर हियर टू फाइट एंड वी विल बी फाइटिंग। दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम।
0: जो चैट अभी सबके सामने है मीनाक्षी, वो चैट आपके साथ हो रही थी। त्रिशा लगातार आपको एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि ये शादी ठीक नहीं है, मैं तो फंस चुकी हूँ, तुम ऐसी शादी में कभी मत फंसो।
2: वो 15 दिन से मेरे को मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट वो फोन नहीं कर पा रही थी। बट ये मैसेज करती थी कि शादी में जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के शादी करना, क्योंकि हम दोनों सेम एज के, ऑलमोस्ट 2 साल मेरे से बड़ी है बस। तो हम अब शादी से पहले हमारा डिस्कशन होता था कैसे लड़के से शादी करनी है, क्या है, तो वो मुझे हमेशा समझाती थी। फिर शादी के बाद बोलने लगी कि जो मैंने गलती करी है वो तुम मत करना। और मेरे पास लास्ट मैसेज उसका सैटरडे को आया, जिसमें उसने लिखा है, मैं ये मैसेज भी दिखाऊंगी, कि आई एम ट्रैप्ड ब्रो। हम लोग एक दूसरे से ब्रो ब्रो करके बात करते थे, तो बस तू मत फंसना। वो हमेशा मुझे यही इंडिकेशन
0: समझ पा रही थी कि क्या कहना चाह रही है।
2: हाँ, मेरे को दिख रहा था कि वो किसी बहुत ही बुरी चीज़ में है अभी, जो बात नहीं कर पा रही है। मतलब उसको सोचना नहीं पड़ता था फ़ोन में आने से पहले, मेरे को वो कभी भी कॉल कर देती थी। उसको सोचना पड़ रहा था शादी के बाद
0: बात करने के लिए।
2: मतलब इतना ऐसा लगता था, मैं जब उससे मैसेज पे बात करती थी तो ऐसा लगता था कि वो डरी हुई है, कि कोई उसके आसपास है जो उसको देख रहा है, वो बात नहीं कर। वो हमेशा यही बोलती थी, आई विल कॉल यू व्हेन द टाइम इज राइट। अभी सब लोग हैं यहाँ पे, अभी ये है, अभी ये लोग।
0: आपने समझने की कोशिश की क्यों लिख रही है? आपने पूछा उससे?
2: मैं बार बार उसको मैसेज कर रही थी कि तू बता, आई एम वरीड अबाउट यू, क्या हुआ है, टुक टुक बता क्या हुआ है। वो बोलती थी मैं कॉल करूंगी, हमेशा यही। वो कॉल ही नहीं कर पा रही थी। मतलब ऐसा क्या था कि वो कॉल नहीं कर पा रही थी? मैम,
0: उसके जो हस्बैंड के साथ ताल्लुकात थे, शादी के सिर्फ 5 महीने हुए थे, न्यूली वेड है, ज़्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप तो कज़न है, बहन है, शेयर करती होगी किसी के बाद एक्साइटेड थी कि वो भोपाल आई है, एक नए घर में आई।
2: शादी के बाद मैम उसका 15 किलो 15 kg उसका वेट लूज हुआ है। वो उसके रियल भाई की शादी थी, हम सारे मिले थे शादी में, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था, शी इज़ अ न्यूली मैरिड वेड ब्राइड। और उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था, बहुत ही फीका उसका चेहरा। हमने उसको पूछा भी कि तेरा इतना क्यों वेट लूज हो गया है, तो उसने एक बार ये मेंशन भी किया, यार खाने को मिलता ही नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब खाना इतना है ही नहीं, मतलब जिस हिसाब से हम लोगों के यहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे उसने पूरा अपोजिट बताया, कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड खाना बनाते हैं, खाना नहीं देते ढंग से, और जब खाना ख़त्म हो जाता है तब बोलते हैं कि खाना खा लो। तो उसने काफ़ी बार बोला भी, उसने मुझे फ़ोन पर बताई थी,
0: गड़बड़ है, मुझे कुछ करना चाहिए
2: लगा। मैम वो आप रही भी नहीं है, मैम आप वो वहाँ पर ज़्यादा रही भी नहीं है, बिकॉज दिसंबर में उसकी शादी हुई है, फिर मार्च में उसके भाई की शादी थी, तो 2 बार शॉपिंग करने आई है दिल्ली में, एक एक हफ्ते के लिए रह के गई है, शॉपिंग में ही सारा टाइम था, शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर मार्च में शादी, मार्च के बाद फिर फूफा जी जो फादर हैं उसके, उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसमें एक हफ्ते 10-15 दिन रही थी उसमें।
0: वक्त नहीं आप बिता पा रहे थे साथ में कि आप एक्सचेंज कर पाएं कि उसकी ज़िंदगी में
2: प्लीज़। सब चीज़ें बहुत जल्दी, अभी लास्ट 1 महीने से रह रही होगी वो लोग, या अच्छे से रही होगी जो भी, 1 महीने उसने मोस्टली, 1 महीने में उसको इतना टॉर्चर कर दिया, इतना उस पर ऐसा क्या कर दिया उसके साथ 1 महीने में, वो तो उन लोगों के यहाँ। और जो वो लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग उससे मिलने नहीं आते, अरे वो तो आ ही रही थी ना हमारे यहाँ बार बार, शादी हो रही है, फादर के साथ ये चीज़ हो गई है, तो आ ही रही थी। आप लोगों के यहाँ 1 महीने, आपने 1 महीने में उसके साथ ये सब कर दिया।
0: इनफैक्ट NDTV's मैनेजिंग एडिटर शिव अरूर ऑल्सो स्पोक टू त्रिशा शर्मा's फादर एक्सक्लूसिवली। In this conversation, Trisha's father called her husband Samarth Singh a wolf in sheep's clothing. Let's listen in.
3: जब शादी हो गई थी और त्रिशा उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
4: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
3: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
4: जिसमें बेड़िया
3: जी
4: आती थी आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: द मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह हैज ब्लेम्ड त्विशा फॉर द पूजा पार्ट शी कंडक्टेड एट होम एज मेयरली अ शो। She alleged that Twisha had taken abortion pill on her own and later informed her husband Samarth about it. According to her, Twisha was under tremendous psychological pressure from the glamour world and she was seeing a psychiatrist and also was under medication and used to go for various counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and withdrawal symptoms, Giribala says, while taking medicine. Her behavior allegedly changed drastically after her visit to New Delhi to her parents' place, remarking that young women today take extreme steps very easily. She has spoken exclusively to NDTV's Akash.
5: Ms. Singh, I want to first ask you what exactly happened that night. We want to understand your version before I ask you other questions on it.
6: Madam, we have, you know, our throats are dry just telling that how traumatic this entire experience has been. Twisha was my daughter-in-law and she has left a huge vacuum. That day we were all together, we watched TV. After that she often goes on the rooftop or outside to have a chat. 9:40 in the CCTV footage, it is visible that she is going upstairs. There has been no access between her and us, either on phone or otherwise. In fact, the last called numbers are from the mother, the parent side. They must explain what is the conversation they had.
5: Ms. Singh, where were you when she was on the terrace?
6: Give her all the resuscitation. I was in my bedroom. Obviously, it was after 10 and I retired for sleep at about 9:30.
5: So what do we see in that CCTV footage? Explain to us, ma'am, what we see. We see your husband, we see someone going up the stairs as well. Where was Twisha coming from? Because even in your press conference, while you say that this is a setback, that your daughter-in-law has died, you have also gone on to say that she destroyed you and your family. So explain to us what happened in that CCTV footage. If there is a vacuum that cannot be filled because of her demise, why do you say she

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: वी एट एनडी टीवी ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वाज द हॉटेस्ट इलेक्शन इन ऑल ऑफ इंडिया। All of India watched it on NDTV.
4: Why I say this, this could be a big story.
5: Thank you.
3: Stories that no one else had.
6: The memorial they have built is not just for Avicii.
3: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
7: Is back yahan par afra tafri ka
3: moments that gave competition viral fever.
8: Habib ka gunda hamla kiya.
9: Janta ek gunda raj ko khatam karna chah raha.
10: Bengal bachane ka vote.
11: Fight for justice. Fight for every woman here.
3: When it was anything Bengal, you tuned in only to NDTV. This GOG selections. NDTV.
12: Size of fish, what taste of fish you like?
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा।
16: सबका राजा आर प्योर मसाला।
17: Across the country,
2: he has tracked the pulse of power. From Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
18: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
19: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू।
20: Welcome back. Well, let's now focus on the significant ruling that came from the Supreme Court on the issue of stray dogs, where the Supreme Court refused to revisit its earlier order of 2025, also saying that public safety is of importance. So a major decision by the Supreme Court to control stray dog attacks. The top court allowed for the removal of stray dogs from public institutions and transport hubs, so schools, hospitals, railway stations as well. The court said that public safety cannot be ignored amid the rising incidents of dog attacks taking place across the country. The Supreme Court has ruled that stray dogs can be removed from places like hospitals, schools, railway stations and airports to ensure public safety. A three-judge bench observed that the governments cannot remain silent while cases of stray dog attacks are continuing to rise. It also held to task all the states, saying that not enough is being done by the state governments and administrations to control this issue of stray dogs. Let's listen into some of the reactions.
21: जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकेंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके।
22: इन्होंने पिछले वर्डिक्ट में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, इस और शेल्टर्स बनाओ। ये पांचों चीजें किसी ने नहीं की, तो अब उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हमने जो कहा सो कहा, सुनते रहिए, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो हाईकोर्ट में जाए।
23: आई थिंक इट इज अ बैलेंस्ड जजमेंट। Way back earlier in November, the court had asked for dogs to be summarily picked up and removed and kept in shelters, whatever. Here

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal. This was the hottest election in all of India. All of India watched it on NDTV.
1: Why I say this, this could be a big story.
2: Thank you.
0: Stories that no one else had.
3: The memorial they have built is not just for Avicii.
0: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
4: Moments
0: that gave competition viral fever.
5: Hamid ka gunda hamla kiya.
6: Janta ek gunda raj ko khatam karna chah raha.
7: Bengal bachane ka vote.
8: Fight for justice. Fight for every woman here.
0: When it was anything Bengal, you tuned in only to NDTV. This GOG of elections. NDTV.
9: Size of fish, what taste of fish you like.
10: Across the country.
11: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth. We connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
11: India's
13: Welcome, you're watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, and we continue to track the story which has shook the nation since yesterday. There have been perhaps new lapses, FIR mix-ups in the Twisha Sharma death case with the hunt on for her husband, Samarth Singh, who is absconding till now. We will be taking you through the key highlights of the Twisha Sharma death case with the family still seeking justice. Also on Prime 5, Prime Minister Modi will be reaching Italy, the last leg of his five-nation tour. We'll take you through the key areas of focus as he wraps up his five-nation tour after Italy. But first, quick check on the headlines. Lookout notice issued against Twisha's husband, Samarth, who has been on the run for over 7 days. NDTV accesses Twisha's post-mortem report that confirms that the 33-year-old died by suicide. Fuel prices hiked for the second time in less than a week. Petrol prices up by 90 paise across cities. Diesel sees similar hike. Opposition hits out at the Modi government. Days before Falta by-polls in Bengal's Diamond Harbour, TMC candidate Jahangir withdraws from the race. TMC says it was his personal decision. Storm over Tamil Nadu, Chief Minister's tribute to LTTE Chief Prabhakaran on his death anniversary. BJP hits out, slams Congress for not having any ideology. TVK sources say the day is also about the massacre of Tamils in Sri Lanka. In other news, Supreme Court refuses to stay its earlier order on stray dogs, says public safety cannot be ignored. Aggressive dogs to be euthanized, pulls up states for failing to take sustained action.
14: Presented by Canara Bank. Together we can.
13: All right, we have some breaking news coming in. NDTV has now accessed Twisha's post-mortem report in which it says that Twisha used belt as noose. Ligature report further confirms that the suicide belt has been identified. That's the NDTV accessing Twisha's post-mortem report. Apart from that, it's also been identified as belt has been identified as the hanging instrument. Police delay in submitting belt under scanner and belt handed over only 2 days ago. I have my colleague Sikta from Warm. This is joining me live from Bhopal. Sikta, of course, a lot of lapses in the investigation with the belt now at the epicenter of the lapses there. Tell us more with the investigators probing all kind of procedural lapses when it comes to Tushar Sharma's death case.
8: Rahisha, there are plenty of questions which the police needs to answer right now. Well, with me is ACP Rajneesh Kashyap, who's heading the SIT and probing the death of Tushar Sharma in Bhopal. He's with me live right now. Let's go across straight to him. Rajneesh ji, sabse pehla sawal ye ki postmortem report se abhi aap logon ke paas kya jankari hai? Preliminary report aa gayi hai, final report aa gayi hai. Tushar Sharma की मौत कैसे हुई? उस बेल्ट से हुई है? वो अपने आप को उसने हैंग किया है? क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं?
2: जो थाना कटावा हिल के अंतर्गत जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसमें मर्ग इंक्वेस्ट फाइल हुई थी. मर्ग इंक्वेस्ट के बाद जांच पर से इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अपराध परिजनों के कथन PM रिपोर्ट के बेसिस पे पंजीबद्ध किया गया था. PM रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एंटीमार्टम हैंगिंग था और यही इसी कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस जो चूँकि पीड़िता नवविवाहिता थी और शादी के 5.5 महीने के अंदर ही असामान्य परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई थी, तो इन्हीं सभी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए तथा दहेज की मांग को देखते हुए केस पंजीबद्ध किया गया था.
8: मिस्टर काश्यप, सवाल ये उठ रहा है कि वो बेल्ट क्यों पोस्टमार्टम के दौरान या उस वक्त नहीं दिया गया जब पूरी जांच चल रही थी? आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने पोस्टमार्टम होने के बाद उस बेल्ट को सौंपा है, तो ये लैप्स है, बहुत बड़ा लैप्स है पुलिस.
2: जो लाइगेचर मटेरियल है जिमनास्टिक बेल्ट, तो जिमनास्टिक बेल्ट को जो तत्कालीन आयु थे उनके द्वारा FSL टीम का इंस्पेक्शन हुआ था. इंस्पेक्शन के बाद FSL टीम द्वारा उस बेल्ट का भी इंस्पेक्शन किया गया था, करने के बाद आयु को हैंडओवर कर दिया गया था. अब आयु ने नेक्स्ट डे उसको सबमिट किया है.
8: मानते हैं लैप्स हुआ
2: इस संबंध में, चूँकि कई बार
8: मिलान उसी वक्त होना चाहिए था ना, मैच होना चाहिए था मार्क्स से और उस बेल्ट.
2: उसमें उसकी रिपोर्ट भी आ गई लाइगेचर की और वो कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो जाती है और कई बार तो इस संबंध में जो तत्कालीन आयोग है तो उनको उसके संबंध में उनका वो भूमिका भी देखी जा रही कि क्या था कारण कि वो तत्समय नहीं दे पाए और बाकी बाद में उनके द्वारा दिया गया.
8: तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी की आत्महत्या भी अगर रिपोर्ट की जा रही है तो उसने आत्महत्या कैसे की, वो मटीरियल क्यों नहीं बरामद हुआ, अगर बरामद हुआ तो सौंपा क्यों नहीं गया, क्योंकि मिलान होना है, मैच होना है जो शरीर पर निशान है उसके, तो ये तो बहुत बड़ा लैप्स है. आप मान रहे हैं, हाँ आप कह रहे हैं कि जांच हो रही है, प्रोब हो रही है, लेकिन लैप्स भी तो है.
2: इस मामले में जो मेरी कंसर्निंग डॉक्टर से बात हुई थी तो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया था. जो PM रिपोर्ट जो है उसमें भी कॉज ऑफ डेथ एज इट इज है जो प्राइमरी रिपोर्ट में है और रहा ये बेल्ट को, तो बेल्ट को लेकर भी रिपोर्ट अभी आ गई है लाइगेचर मटेरियल.
8: शरीर पर जो चोट के निशान है उसके बारे में अभी आप क्या बता सकते हैं?
2: जो PM रिपोर्ट है, जो प्राइमरी PM रिपोर्ट है, इसका उल्लेख है, इसको हम FIR में भी हम लोगों ने बताया कि मल्टीपल इंजरीज हैं बॉडी में और जिनका नेचर सिंपल इन नेचर है और सिंपल इन नेचर होने के कारण इस संबंध में डॉक्टर से डिटेल क्वेरी भी करवाई.
8: क्या ये कह सकते हैं कि अगर त्विशा ने आत्महत्या की है तो उससे पहले पति पत्नी में या किसी और के साथ मारपीट हुई है, निशान आए कैसे, इस बारे में कुछ क्या बात बता सकते?
2: इस बारे में एम्स भोपाल से डिटेल में क्वेरी की गई है कि ये जो चोट है, चोट का टाइप क्या है, इनकी टाइमिंग क्या है, इनका नेचर क्या है, तो इस संबंध में जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें नेचर इनका सिंपल बताया गया है और नो डाउट क्योंकि हम लोगों ने इसमें 490 ये जो पहला है जो अभी VNS में 80 हो गया है जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना से रिलेटेड है, तो ये धाराएँ भी लगाई हुई हैं FIR में. इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए, प्रताड़ना को देखते हुए धाराएँ भी लगाई गई हैं FIR के अंदर.
8: जो त्विशा शर्मा की मदर इन लॉ ने आरोप लगाया है कि त्विशा एडिक्शन की शिकार थी, ड्रग एडिक्ट थी, तो पोस्टमार्टम में क्या कोई इस तरह का ड्रग अब्यूज़ के निशान मिले हैं क्या?
2: इस संबंध में हमारे द्वारा हमसे क्वेरी की गई है और उसकी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी और वहाँ ड्रग एडिक्शन का
8: अभी मालूम नहीं है.
2: ड्रग एडिक्शन जो प्राइमरी रिपोर्ट थी तो उसमें ऐसा ड्रग एडिक्शन संबंधी कोई भी एविडेंस नहीं थे और वहाँ ड्रग एडिक्शन का सवाल, तो इस संबंध में चूंकि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, SIT गठित है, तो जितने भी जांच में जो आरोप प्रत्यारोप या जो भी नए तथ्य एविडेंस या साक्ष्य आते जाएंगे हम लोग बिल्कुल उस पर जाँच करके उसको शामिल करेंगे और जाँच का दायरा भी बढ़ाएंगे.
8: डॉक्टर राजेश, ये भी बताइए कि जो इस पूरे मामले में त्विशा के परिवार ने, उसके माता पिता ने त्विशा के पति को मुख्य अभियुक्त बनाया है जो अभी फरार है, जिसके लिए आप लोग खोजबीन कर रहे हैं, मैंने सुना है SIT की 6 टीमें लगी हुई हैं, ऐसा कहाँ वो शख्स गायब हो गया कि आपकी टीम को पता ही नहीं चल रहा, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ?
2: बिल्कुल, इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर भोपाल महोदय द्वारा इसमें टीम भी बनाई गई, हम लोगों द्वारा टीम की संख्या भी बढ़ा दी गई है और बिल्कुल इसमें इनाम भी घोषित करवाया गया है फरार आरोपी के विरुद्ध, और हमारी टीमों द्वारा ह्यूमन एंड टेक्निकल साइबर और जितने भी लोग हैं हम लोग इसमें बिल्कुल जुटे हुए हैं और तत्पर हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ हमारे द्वारा अपने भोपाल,
7: आपको कोई जानकारी नहीं है इस वक्त अट्वेशा शर्मा का पति कहाँ है?
2: बिल्कुल टीमें लगी हुई है, जैसे हमें जानकारी होगी तो हम बिल्कुल अरेस्ट करेंगे और इसके पासपोर्ट के संबंध में भी हमारे द्वारा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आवश्यक लुकआउट सर्कुलर के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए भी पत्राचार किया गया है और बिल्कुल जैसे भी होगा तो हम उसको।
7: मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से बाहर है, हालांकि आप बता रहे हैं कि उसके जो पासपोर्ट है उसको एक तरह से उस पर वो आगे देश से बाहर ना निकले उस पर कार्रवाई के लिए आप लोगों ने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल में है, कोई जानकारी, कोई क्लू?
2: बिल्कुल निश्चित तौर पर यदि कोई क्लू होता तो आज वो अरेस्ट होकर जेल में होता, हम लोग इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और लगे हुए टीमें भी लगी हुई हैं कि एक भी कोई भी इसमें ऐसा लूपहोल नहीं छोड़ा जाएगा और उसको अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है।
7: तो ऐसा लग रहा है कि वो क्रिमिनल लॉयर रहे हैं तो पुलिस से दो कदम आगे ही चल रहे हैं।
2: ये चूंकि वो अपराधी है और आपराधिक उसने इतना गंभीर अपराध किया है,
7: समझ है कि आप लोगों से कैसे बचा जाए
2: और है तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं, रहा इसका प्रश्न कि वो क्रिमिनल लायक है और ये है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता केस में कि आप क्या हो क्या नहीं हो, हमारा तो उद्देश्य है कि जो भी हमारे केस का आरोपी है तो उसको अरेस्ट करना और इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से करना कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके।
7: जी, एक और मामला जो लगातार परिवार उठा रहा है जिस पर एक समझ जरूरी भी है, डाउरी हैरेसमेंट का मामला बनता है क्योंकि 6 महीने भी नहीं हुए इस शादी को, ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल की दलील देकर जो सास हैं त्वेशा शर्मा की वो छूट जाती हैं, तो क्या ये दलील वहाँ पर वाजिब ठहरती है, उस पर भी परिवार सवाल?
2: चूँकि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है तो इस पर भी कोई टिका टिप्पणी उचित नहीं होगी, न्यायालय ने अपने तर्कों के आधार पर दिया है, इसके लिए जो अपर कोर्ट है तो उस पर बिल्कुल अपील करके उसको हम लोग प्रयास करेंगे, तो न्यायालय का ये विषय है तो इस पर कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की जाएगी।
7: तो इस वक्त आप कह रहे हैं कि जो सेकेंड पोस्टमार्टम की जो बात कही जा रही है अड़ंगा पुलिस लगा रही है, पीड़ित परिवार यही कह रहा है, उसको क्या जवाब देंगे आप? सेकेंड पोस्टमार्टम आप लोग क्यों नहीं करवा रहे? ये भी हम सब जानते हैं कि बॉडी ज़्यादा दिन तक रखी गई तो डिकम्पोज हो जाए।
2: बॉडी के लिए हम लोगों के द्वारा ही प्रयास किया गया है और इस संबंध में एम्स प्रबंधन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉरेंसिक टॉक्सोलॉजी से भी संपर्क किया गया है, इस कारण बॉडी को अभी जितनी भी बेस्ट फैसिलिटी है एम्स के अंदर तो उसके तहत उसको प्रिजर्व करने का प्रयास किया जा रहा है और सेकेंड पोस्टमार्टम की एक विधिक प्रोसीजर होती है, चूँकि वो मध्य प्रदेश के बाहर अदर स्टेट में पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो सक्षम न्यायालय है उसकी अनुमति के बाद ही ये निर्णय हो पाएगा, उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे जो विधिक सलाहकार हैं जिला
7: पुलिस के डोमेन में नहीं आता है कि आप दूसरा पोस्टमार्टम उनको एक तरह से आश्वस्त करने की करा पाए।
2: पुलिस द्वारा एम्स भोपाल में और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसके तहत 4 डॉक्टरों की टीम द्वारा और विधिवत वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम और परिजनों की उपस्थिति में और जो यहाँ पे तहसीलदार थे उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और जो हमारी जो FIR है उसको सपोर्ट भी कर रही है और वहाँ सेकंड PM का तो सेकंड PM के संबंध में जो निर्णय है वो सक्षम न्यायालय ही लेगा और हम लोग इस संबंध में हमारे जो विधिक अभिमत उससे राय भी ले रहे हैं और न्यायालय के संबंध में इस बात को रखेंगे।
7: से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजनीश कश्यप, जो बात कर रहे थे दैट वॉज SIT हेड हु इज हेडिंग दिस होल प्रोब फॉर त्वेशा शर्माज डेथ एंड दैट्स ऑल ही हैज टू से राइट नाउ, ही डजंट नो वेद हस्बैंड इज एब्सकॉन्डिंग एंड सेकेंड PM रिपोर्ट पुलिस इज नॉट गोइंग फॉर इट, द फैमिली हैज टू मूव ऑन देयर ओन एंड गेट दैट जुडिशियल ऑर्डर।
13: Right, absolutely. Thanks very much, Sikta, for joining us from Ground Zero with, of course, the belt, which is now at the epicenter of the investigation because the investigating officer did not produce that belt. But let's tell you more about the lapses which have emerged in the ongoing investigation. First up, belt not shown during post-mortem, and the belt has emerged as the key evidence which is missing at a very crucial stage. Now, it was a nylon belt which was allegedly used by Twisha to hang herself. I mean, of course, the claims of suicide is being made by Twisha's in-laws. The belt seized was not produced before AIIMS doctors in Bhopal, and that is why Twisha's parents want the case to be shifted to Delhi and, of course, are demanding a second post-mortem. There's also a huge confusion regarding the belt versus ligature marks on the neck, which has now not been compared because the belt was not produced for the post-mortem. Hence, there can be no comparison on the various kind of marks on Twisha's body and the belt which was used allegedly to hang herself. There have been two parallel marks on neck, but no belt examined. Hence, there has been a major lapse in comparing whether the belt was used for, if the belt was, of course, used for any kind of lapses there. But let's now tell you more about the other lapses which have perhaps emerged. First up, the belt was handed over forensics after the post-mortem. So the belt was handed over to the forensics after the post-mortem was completed. Twisha's age was mentioned as 31 and 33 in the same FIR. So there's, of course, been a lot of mix-ups in the FIR as well. FIR states, body handed over to family, but body has been in the mortuary for over 7 days, and Twisha's own parents have not been able to access that. Husband Samarth, who's still absconding, and there's of course been a rupees 10,000 bounty on Samarth as well. But let's tell you more about what else is happening in this very heart-wrenching case. In the heart of Bhopal, the mysterious death of young Twisha Sharma has sparked outrage and serious doubts over whether justice is being served. What began as a reported case of suicide by hanging is now raising alarming questions about evidence handling as well, procedural violations and possible influence peddling. As fresh revelations emerge in this very story, our next report takes you through all the possible lapses that took place in the case. Take a look.
15: The probe into the death of Twisha Sharma is now facing tough questions, not just over what happened inside her Bhopal home, but also over how the investigation itself was handled. According to AIIMS Bhopal's post-mortem report, the belt allegedly used in the hanging was not brought by the investigating officer during the autopsy. Without the alleged ligature material, doctors could not compare the belt with the marks found on Twisha's neck, a key forensic procedure in suspected hanging cases. Twisha's family alleges months of mental and physical abuse, dowry harassment, and attempts to weaken the investigation through influence. The special investigation team heading the probe has now admitted the lapse. Police have acknowledged that the belt had been seized from the spot, but was not presented during the autopsy process by the investigating officer. Police claim the belt was later handed over to the Forensic Science Laboratory and eventually deposited at AIIMS Bhopal. But the delay has only intensified questions over evidence preservation and possible tampering. Investigators are also under scanner over another crucial aspect. Twisha's body was allegedly moved to the hospital before police were called to the scene. The SIT says CCTV footage from the residence is now being retrieved to establish the sequence of events. Meanwhile, Twisha's family has accused her husband's mother, retired Judge Giribala Singh, of trying to influence the narrative by claiming Twisha suffered from psychiatric issues and drug addiction. Police, however, say there is no evidence so far to support those claims. With every new revelation, the focus is now shifting from just the circumstances of Twisha Sharma's death to whether critical procedural lapses compromise the investigation itself. As demands for justice grow louder across the country, the spotlight is firmly on the SIT and whether the truth in the Twisha Sharma case can still be fully uncovered. Bureau Report, NDTV.
13: Well, CCTV video has now surfaced in the mysterious death case of model and actor Twisha Sharma in Bhopal. The footage shows Twisha climbing the stairs of her marital home shortly before her death. Moments later, the video captures frantic attempts by family members, including her husband, Samarth Singh, to revive her through CPR. That's before carrying her body downstairs. Here's a detailed report on what happened the moments before her death.
16: This is 33-year-old Twisha Sharma climbing towards the terrace of her house in Bhopal's Katara Hills area. Shortly after, the video shows at least three men, including her husband, Samarth Singh, attempting CPR on Twisha. The attempts appear unsuccessful before her body is carried downstairs. Twisha's mother-in-law, retired Judge Giribala Singh, is also seen in the footage. Twisha was found dead at her marital home on the 12th of May.
17: We opened that, usne body aisa upar kiya and I tried to remove this thing. So, jaise remove kiya, wahi ka wahi CPR diya, wahi ka wahi push kiya, Manu ko, jo bagal mein beta hai, usko bulaya, gate mein daud ke kholi, gaadi nikali, sister ki gaadi bhi nikali, because kya hai, utne bade person ko lana, do seedhi paar karte huye, seedhi ka ghumao itne rehte hain, it is so difficult, aap mane, it's so tragic, or it's all, between all of this, hame criminal bataya ja raha hai.
16: According to the preliminary post-mortem report from AIIMS Bhopal, the cause of death appears to be hanging. Police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide against Samarth Singh and his mother. While Giribala Singh has secured anticipatory bail, Samarth Singh remains absconding. Police say efforts are underway to trace him. The case took another dramatic turn after contents of a bail application filed on behalf of Samarth Singh surfaced publicly. The plea alleged that Twisha was battling a drug addiction and undergoing psychiatric treatment and counselling. The application further claimed that Twisha had travelled to Delhi in April and remained untraceable for several hours before reaching her parents' home. With Samarth Singh still on the run and the special investigation team intensifying its probe, investigators are expected to closely examine the newly surfaced video, digital evidence and statements from family members in the days ahead. Bureau Report, NDTV.
13: Well, after the shocking death of Twisha Sharma, efforts are on to trace her absconding husband, Samarth Singh. He's a Bhopal-based lawyer. Twisha's husband has been at large after an FIR was lodged over dowry death. The Bhopal police have now launched a manhunt and the Deputy Commissioner of Police has announced a reward of ₹10,000 for any information on Samarth Singh, who is, as we speak, absconding. In fact, not just that, a lookout circular has also been issued against the husband. In the latest, NDTV has accessed last CCTV video of Twisha. In this video, Twisha was seen heading to the terrace, after which panic unfolded inside the house. Two men attempted CPR in quick succession as family members rushed in and out of the room. The mother-in-law, and that's the video playing out here, the mother-in-law briefly saw Twisha before going downstairs, and shortly after, three men were seen carrying Twisha downstairs from the terrace area. The focus right now, after, of course, the unfortunate death of Twisha Sharma, is on her husband, who is currently absconding. Here's a report filed by my colleague Sikta Dio.
7: तो हम इस वक्त भोपाल के कटारा हिल्स में मौजूद हैं, जहां पर ट्विशा का ससुराल था. ये वो मकान है जहां पर ट्विशा की मौत हुई है और उसके ससुराल वाले दावा कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है. इसी मकान की छत पर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. ये दावा ससुराल वालों का है. हालांकि ट्विशा के परिवार वाले इसे मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कई सवाल उठाए. एक सवाल ये भी है कि जब उन्होंने ट्विशा को फांसी पर लटका पाया तो उसे उसमें फंदे से उतारने के बाद पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया. तो एक रियलिटी चेक की भी अब बात हो रही है, जिसको मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि ट्विशा का जो परिवार है, माता पिता हैं, भाई हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कटारा हिल्स की पुलिस चौकी है वो इस घर से कुछ ही कदम दूर है. यानी कि अगर आप इस घर से निकलेंगे, जैसा कि हमारा ये कैमरा भी जा रहा है आगे, इसके 10 से लेके 100 कदम आगे ये पुलिस चौकी है. तो यानी कि आप कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको मदद चाहिए तो कोई एक शख्स इस घर से निकलकर दौड़कर इस पुलिस चौकी तक पहुंच सकता है और मदद मांग सकता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है. तो देखिए, हमारे कैमरामैन जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे, और मैं बताऊं आपको कि 100 कदम भी नहीं लगेंगे आपको इस पुलिस चौकी तक पहुँचने के लिए. मेरे पीछे यहाँ पर अगर कमलकांत आप पीछे मुड़ कर दिखाएँ तो ये ट्विशा का घर है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ. तो यानी कि कोई दौड़ कर भी आता, 5 मिनट नहीं लगते पुलिस तक मदद मांगने के लिए, पुलिस को बुलाने के लिए. तो परिवार ये सवाल उठा रहा कि अगर इतने पड़ोस में एक पुलिस चौकी थी, यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे, और जब पति ने, सास ने देखा कि कि ट्विशा लटकी हुई है फांसी में, अपनी जान देने की वो कोशिश कर रही है, तो मदद के लिए तुरंत उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर किसी को भेजा और क्यों नहीं किसी पुलिस वाले को बुलाया कि देखिए हमारे घर में ये बड़ा हादसा, ये बड़ी ट्रेजिडी हो गई है और आप इसके बारे में कुछ करिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रियलिटी चेक है, कितने कदम लगे मुझे, करीब 100 कदम और मैं इस पुलिस चौकी में हूँ। इस पुलिस चौकी में बताया जाता है रात को तैनात रहते हैं पुलिस कॉन्स्टेबल्स यहाँ की निगरानी करने के लिए और उस रात भी यहाँ तैनाती रही होगी। तो ये रियलिटी चेक कटारा हिल से कि आखिर ट्विशा के ससुराल वालों ने जब उसे फांसी पर लटके देखा, उसे फंदा बनाकर लटका हुआ देखा, तो क्यों नहीं वो इस चौकी तक आए और मदद मांगने की कोशिश की, क्यों नहीं इनको जवाबदेह बनाकर इंसिस्ट किया कि आप तुरंत इस मामले में एक FIR, एक पुलिस रिपोर्ट बनाएं कि ट्विशा ने अपनी जान लेने की कोशिश की है।
13: Well, the next big question right now is where is Twisha's husband? Where is Samarth Singh? Let's tell you more about who he is actually. Who is Samarth Singh, the absconding husband? Twisha's husband, of course, currently absconding right now. Apart from that, he is an independent litigator and a legal advisor as well. He was practicing law. He's a practicing lawyer since September 2018. Apart from that, he's practiced in various courts, to name some: Bhopal, Jabalpur, and even Indore. He specialized in criminal defense, service law, consumer protection as well. Let's now take you through, of course, he's from an advocate to an accused. Let's now take you through his educational background, his education and his career. He is a BA LLB honors, NLSIU Bengaluru pass out. Apart from that, he has also studied Erasmus Mundus Exchange and Ghent University. Apart from that, he's been a former legal advisor, government of Madhya Pradesh as well. That's in the time period of June 2023 till August 2025. He's been enrolled with Bar Council of Madhya Pradesh in 2018. Let's now tell you about the case, which is under scanner. He is so educated. He's been an advocate, but right now he's an accused criminal who is absconding. The case under scanner right now against Samarth Singh. Of course, he's been booked in wife Twisha Sharma's death case. Currently on the run, the hunt is on to nab him. What are the allegations against Samarth Singh now? FIR includes dowry harassment allegations against Samarth Singh. Mother-in-law, I mean, Twisha's mother-in-law, but Samarth Singh's mother, a former judge herself, Giribala Singh, also has been named in the FIR. Twisha found dead in Bhopal on May 12th. And let's now tell you about the court and the investigations which is going on as we speak. Anticipatory bail has been rejected on May 18. The police announced ₹10,000 reward for the whereabouts of Samarth Singh, who is on the run. Apart from that, Samarth Singh, as we speak, is reportedly untraceable. And Twisha's family demands fair probe and also second post-mortem. Of course, apart from seeking justice, there are two major demands of Twisha's family: a second post-mortem and a fair probe as well. But let's now tell you what the mother-in-law has been saying so far. Yesterday, she gave an interview. The mother-in-law has blamed Twisha, claiming that the puja path conducted at home was merely a show-off. She alleged that Twisha had taken an abortion pill and had personally called Samarth to inform him about it. According to her, Twisha was under immense psychological pressure from the glamour world. She even accused Twisha of consuming marijuana in large quantities, which led her to visit a psychiatrist and also attend counseling sessions. She reportedly suffered from shivering hands and also from other kind of withdrawal symptoms while taking a medicine. Her behavior allegedly changed drastically after visit to Delhi, with the mother-in-law remarking that young women today take extreme steps very, very easily. Well, my colleague Vedika has spoken with the mother-in-law. Take a listen.
18: Ms. Singh, I want to first ask you what exactly happened that night. We want to understand your version before I ask you other questions on it.
17: Madam, we have, you know, our throats are dry just telling that how traumatic this entire experience has been. Twisha was my daughter-in-law, and she has left a huge vacuum That day we were all together, we watched TV. After that, she often goes on the rooftop or outside to have a chat. 9:40 in the CCTV footage, it is visible that she is going upstairs. There has been no access between her and us, either on phone or otherwise. In fact, the last called numbers are from the mother, the parent's side. They must explain what is the conversation they had.
18: Ms. Singh, where were you when she was on the terrace?
17: Give her all the resuscitation. I was in my bedroom. Obviously, it was after 10 and I retired for sleep at about 9:30.
18: So what do we see in that CCTV footage? Explain to us, ma'am, what we see. We see your husband, we see someone going up the stairs as well. Where was Thwisha coming from? Because even in your press conference, while you say that this is a setback, that your daughter-in-law has died, you have also gone on to say that she destroyed you and your family. So explain to us what happened in that CCTV footage. If there is a vacuum that cannot be filled because of her demise, why do you say she destroyed your family?
17: She destroyed because now her family is, you know, they are doing like a witch hunt. They want us behind bars. She has created a vacuum, but she was the product of her own troubled personality. This is the best that I can say. Because in the dead of night, when she creeps upstairs, that's why we had to check the CCTV key, exactly where was she at that point. The next day after everything, then we checked and then we saw that she's going upstairs at 9:40. And because we didn't find her in the bedroom, she found that she was not responding to the phone calls. It is then immediately when we rushed upstairs and we saw that the earbuds, they were away. Her phone was away and she was hanging. That was a huge tragedy for all of us. And while we try and see that she gets peace, So I think all of this is...
18: Ms. Singh, where is your son? Let me ask you that pointed question. You're a former judge yourself. He is an advocate. Why is he not facing the law? Why is he not at home? Why isn't the police asking him questions? Why is he absconding, Ms. Singh? You're a former judge. Your son is an advocate. Shouldn't he be facing the questions that the law has for him?
17: Definitely he should be and he will.
13: All right, my colleague Sikta Deo has spoken with Thwisha's mother and father, who have two court demands right now, that the probe should be fair and that there should be a second post-mortem. Take a listen.
7: Rekha ji, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं. बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी. अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया?
19: नहीं, वो हम तो लेने जा रहे थे. 13 तारीख को भी हमने टिकट कराई थी. उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो. यदि अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे, तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इसे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा. तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तोड़ा दे. हमने कहा चल हम अभी नहीं आते, तू हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे. बंद वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ. मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी. तो बोली हाँ मम्मी.
7: अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए. आप जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है. एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते?
20: ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली. उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जा रहा था, मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो. क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है. एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है. और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का, कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले. ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसा ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं. हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी, ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए. तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज को एक्सट्रीम करना।
7: आप जब पीछे मुड़ के आप दोनों जब सोच रहे हैं क्या आप क्या गलत हुआ, आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए।
19: वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती मेरी बेटी है, मैं चली जाती उनके मना करने पे, मैं चली जाती चुपचाप, यही वाला मेरे को हो रहा है।
20: उसको बाय फोर्स निकाल लेना चाहिए था, हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था। ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया।
19: पर मैं जाऊँगी एक एक चीज उसकी रखी है, मैंने मैं क्या क्या देख देख के वो करूँगी।
7: तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी?
19: हाँ वो ऐसा बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी, तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक
7: निकलना चाहती थी।
19: हाँ जी
7: डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी,
20: बिल्कुल बात कर रही थी। वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं इसको छोड़ दूंगी,
19: नहीं रुकूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है ऐसे।
7: माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है, और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से
19: मुझे फ़ोन भी कर रही है, तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो। ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है, तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी, मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक मिस यू टुक टुक, तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिड़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता। अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी।

0: Looking at OMCs, if we need some kind of a pressure to be relaxed, diesel may need 30 to 35 rupees more hike to sustain this kind of pressure continuously coming in for the West Asia crisis. The current hike covers only a fraction of the losses. So continuously, there's been this loss that is coming in. But this is how much hike do oil companies really need? And we told you about the details and the version of the oil companies that is coming in. Will we see more price hike? Well, NDTV will be keeping this and watching this very closely. Let's get you Raman from Patna now. Raman, what are you picking up from the common viewers out there? The government's version is one, but the consumer finally bears the brunt of this. What are people in Bihar telling you?
1: Well, Aditya, I want to show you the visuals right here in Patna at a fuel pump, which is just beside the Vidhan Sabha. And people are here in rush, and they are in fear of a fuel price hiking just twice in a week. And I want to show you the fuel price in Patna. It is almost around 110 per litre for petrol and 96 per liter for diesel, and this is the second time the fuel prices is hike under a week, and this is the situation right now at a fuel station, and people are in very hurry that they are in fear that the fuel prices may get higher in few days, upcoming days. I want to talk with the people out here. Sir, kya lag raha hai tel ke dam jis tarike se badh rahe hain, kya kehna chahenge?
2: कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, क्या कीजिएगा, जो ऐसा पोजीशन है तो बढ़वे करेगा
1: क्या, इससे आपके बजट पे भी फर्क पड़ता है?
2: कोई बजट में फेल नहीं होगा, सब जो चल रहा है उतना चलता ही रहे।
1: कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दो बार बढ़ गए हैं,
3: दाम बढ़ गए हैं, इमरजेंसी में आदमी है, कहूँ हॉस्पिटल जाना है तो आदमी के गाड़ी में तेल खत्म हो रहा है तो बोतल में तेल नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी कम से कम 3 किलोमीटर से धकेल के भाई हमारा लाए हैं, जोरे साथ ये हेल्प किए हैं।
1: तो सी, दिस इज द प्रॉब्लम राइट हियर इन पटना दैट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम फॉर द फ्यूल कंजम्पशन एंड वी हैव सम मोर पीपल आउट हियर। क्या फर्क पड़ रहा है आप लोग को, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, दो बार दाम बढ़ गए एक बीच में?
4: अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट की जैसी विदेश रणनीति हो उस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है।
1: क्या आपके बजट पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है?
4: जी बिल्कुल, जेब पे असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, रेट बढ़ने से हर चीज पे असर पड़ेगी।
1: दिस इज द सिचुएशन दैट द पीपल आर हियर इज सेइंग दैट एवरीथिंग विल अफेक्टेड बाय द फ्यूल प्राइसेस हाइकिंग ऑन ट्वाइस इन अ वीक अक्रॉस द कंट्री एंड दैट इज व्हाई पीपल आर इन फियर एंड इट विल डायरेक्टली डेफिनेटली इफेक्ट ऑन द अदर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री एंड दिस इज व्हाई बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट एंड दैट इज व्हाई द ऑयल कंपनीज हैड डिसाइडेड to hike the fuel price in India just twice in a...
0: All right, Raman, thank you very much for joining us. Let's cut across live to Norway, where Prime Minister Narendra Modi is speaking at the India-Nordic Summit.
5: इस समिट का आयोजन करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी नॉर्डिक लीडर्स का भी यहां स्वागत करता हूं। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलेटरलिज्म के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती है और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में हमारी शेयर्ड प्रायोरिटीज हमारे संबंधों को अवसरों से भर देती है। इसलिए 8 वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा और गति देने के लिए इस फॉर्मेट का गठन किया। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं। इस मजबूत नींव पर अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड्स, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे। हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च में अपना सहयोग और गहरा करेंगे और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। योर एक्सेलेंसी, वैसे तो हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लेकिन कभी कभी एक शब्द भी हमारी नेचुरल पार्टनरशिप को रेखांकित करने के लिए काफी होता है। आज मैंने कई बार इस संबंध शब्द का प्रयोग किया है।

0: कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध का शब्द का अर्थ कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड, हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। आइए हम अपने बीच संबंध को हर क्षेत्र में प्रगाढ़ करें और इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर का एक मॉडल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यूनस फॉर कन्वीनिंग दिस मीटिंग टुडे। ऑल ऑफ अस स्टैंडिंग हियर ऑन द स्टेज बिलीव इन अ रूल बेस्ड world order, and unfortunately the old world order is changing rapidly and it's not going in the right direction, and therefore it is even more important than before that partners who really believes in democracy actually work together, and this is exactly what we have been.
2: All right, that was Prime Minister Narendra Modi speaking at the India Nordic Summit, but that and a lot more after this short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
3: सो मेनी अटैक्स,
2: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: What struck

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
6: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
7: I think that Shiv is not, was not the only incident.
8: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
5: ভরসা অন মোদি জি অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল উই আর উইথ ইউ
9: ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয় देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
10: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
11: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
12: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
1: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
13: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
14: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खाबेन झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most